हर चीज ऑथेंटिक हमें पसंद है, हमारा जो टेस्ट है ना वो बहुत ऑथेंटिक हो चुका है. दैट्स सो ट्रू यार. दैट्स वाई सिंगापुर में सिंगापुर गुजराती कम्युनिटी जो है वो हर बार कुछ अलग करती है, ऑथेंटिक करती है. हाँ जी, अगर आप तलाश रहे हैं ऑथेंटिक गरबा तो सिंगापुर में वो आ चुका है. 16th, 17th and 18th October लगुना बॉल रूम, दूसरी थानी लगुना, 11 लगुना गोल्फ ग्रीन सिंगापुर में होने वाला है ये प्रोग्राम. एंड डेफिनेट माता रानी की आराधना करते हुए आप इंजॉय कर सकते हैं. टिकट्स बहुत ही लिमिटेड हैं, ऑलरेडी सोल्ड आउट होते जा रहे हैं डेज, तो आप क्विकली पहुंचिए sgs.org.sg/navratri2026 जहां आपको और भी कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे डिटेल्स जानने के लिए. खैर इतना कुछ तो हो ही रहा है, सो वाई नॉट मैं भी मौके का फायदा उठा के आपसे कोई सवाल कर लूं. और अगर आपने मुझे क्विकली सही जवाब भेज दिया तो बदले में आपको यहां के गरबा पासेस दे दूं. तो सवाल ये है कि नवरात्रि के 9 दिनों में वो कौन से ऐसे 3 दिन हैं, हाँ जी कौन से ऐसे 3 दिन हैं जब कन्या भोजन करवाया जाता है, ऑफ कोर्स कन्या पूजन किया जाता है, उन्हें पूड़ी से लेके हलवा से लेके चने से लेके खीर से लेके क्या कुछ खिलाया जाता है, वो 3 दिन कौन से हैं? क्विकली बताओ तो मेरी जान. 9151893 पे टेक्स्ट या व्हाट्सएप करके. मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ. डोंट गो एनीवेयर.

0: some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
1: It's a must-be partner event.
0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
0: रिस्क कहाँ नहीं है मेरी जान, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक। हाय हाय, हम तो भाई कांटों पर चल कर जाते हैं सिंगापुर के गलियारों में, एंड एमआरटी पकड़ के ऑफिस पहुंच के काम करके फिर लौट के आ जाते हैं। सो रिस्क तो उसमें भी है कि सामने केले का छिलका पड़ा हो और आपका पाँव फिसल जाए और पैर में चोट लग जाए। तो ये जो रिस्क टेकिंग वाली आपकी हैबिट नहीं है, ये तो आप झूठ बोलो नहीं कम से कम। सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज पर मस्ती मॉर्निंग शो आपके साथ है। वो कहते हैं ना, जब कुछ बड़ा काम करना होता है तो रिस्क लेना पड़ता है। खैर, ये सिर्फ फिल्मी किस्से नहीं है, इन रियल लाइफ भी सेलिब्रिटीज स्टंट्स करके बहुत बड़े रिस्क लेते हैं। पर फॉर अ वाइल एक रिस्क निकल कर आया है। रणबीर कपूर साई पल्लवी स्टारर रामायण मूवी का जो सेट मुंबई में लगा हुआ है, जिसकी तैयारियां दिवाली के लिए जोरों शोरों से चल रही है, वहां पर आग लग गई। ऑल ऑफ द सडन चीजें जो है इमरजेंसी लेवल पे आ गई। हाँ, किसी को हार्म नहीं हुआ है जिसकी बात अभी तक निकल कर नहीं आई, बट हाँ, इनकी मूवी वंस अगेन इस वजह से सुर्खियों में आ गई है। हाँ जी, सुर्खियां बटोरना सबसे ज्यादा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ही आता है। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आज आपके साथ।

0: और सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: देखो जब भी कोई इंडिया से सिंगापुर आ रहा होता है ना, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि थोड़ी सी शॉपिंग ये करते आना वो करते आना, पर सामने वाला इंसान ना उतना तवज्जो देता नहीं है, मतलब उतनी लेवल पर डिटेलिंग से देखता नहीं है, बस ले आता है। सो ये फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सिंगापुर में इंडिया से चलकर 75 से ज्यादा लीडिंग डिजाइनर्स आने वाले हैं, मतलब एक ऐसी हाई लाइफ एग्जीबिशन जहां आपको सिंगापुर में रहते रहते फैशन, स्टाइल, डेकोर एंड लग्जरी मिलने वाली है। दिस 13th एंड 14th अक्टूबर 10 AM to 8 PM आप अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखो और पहुंच जाओ हॉलीडे इन ऑर्चर्ड सिटी सेंटर, बिकॉज वहां पर आपको सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कलीग्स के लिए बहुत सारे गिफ्टिंग ऑप्शंस भी मिलेंगे और फेस्टिव ऑप्शंस भी मिलेंगे। इवन वो वाले जो दोस्त होते हैं ना जो कहते हैं कि आपका इंडियन अटायर बहुत ही अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है, तो उनको भी साथ में लेकर जाओ, उनको भी अपने रंग में रंग लो और सुनते रहो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं आरजे अनुप्रभा आपके साथ।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में रहो।
2: I told you ना, बहुत कम ऐसी चीजें हैं या बहुत कम ऐसी वजह है जिनकी वजह से हमें ना जो वो होता है ना, मतलब काइंड ऑफ रेपिटेशन है ना, रिपीट वाली कास्ट, हमें ये चीजें पसंद आ जाती है ना। कुछ चीजें हैं जिसमें मजा आ जाता है बार बार देखने में, वो चार्म बना रहता है, लेकिन कई बार रिपीट वाली कास्ट के लिए हम थोड़ी ना टिकट्स खरीदेंगे और सिंगापुर के डॉलर्स खर्च करके मूवी देखने पहुंचेंगे। हाँ, दैट्स वाई जो फिल्म मेकर्स हैं कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं। रेडियो मसी 24/7 लाइन पर मैं आरजे नुपुर दिस साइड। एंड अगर मैं अपकमिंग मूवी की बात करूं जिसका नाम है वाराणसी, जिसमें आप डेफिनेटली देखने वाले हैं महेश बाबू और अपनी सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा को, और इन दोनों को ही अभी तक जो भी प्रमोशंस के पोस्टर्स निकल कर आए हैं ना, उसमें स्टंट के अंदाज में दिखाया गया है। मतलब ये दोनों ही धमाल मचाने वाले हैं। तो ये जो धमाल है ना, ये आपको रेपुटेशन नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि राजा मौली की जो पहले भी मूवीज आई है ना, वो चाहे बाहुबली हो, वो चाहे ट्रिपल आर हो, उसमें जिस लेवल के स्टंट्स दिखाए गए थे उनका रेपुटेशन आपको नहीं मिलेगा, कुछ अलग ही मिलेगा। तो चलो कुछ अलग की उम्मीद में आगे चलते है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ।
3: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपैट इंडियंस, एनी टाइम एनीवेयर।

फैमिली फन 16-25 अक्टूबर तक हॉल 9 फॉयर 3 सिंगापुर एक्सपो में एंट्री इज फ्री सो ब्रिंग योर फैमिली एंड सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ इंडिया एट 43rd एडिशन ऑफ ज़ैक्सलाम इंडिया द फैमिली एक्सपो The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaksalamindia.com.

इमेजिन, आप पानी को वक्त को तो नहीं रोक सकते, लेकिन बढ़ते हुए गोल्ड के रेट को सिक्योर कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। कैसे भैया? जोया लुकास के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। और कोई भी त्योहार ना बिना गोल्ड सिल्वर डायमंड के कंप्लीट नहीं हो सकता। एंड इस बार तो गोल्ड मेकिंग चार्जेस जो है वो 1% ऑनवर्ड्स आपको मिल रहे हैं। सो आप अपनी ज्वेलरी प्री बुक भी कर सकते हो। लोएस्ट गोल्ड रेट जो आप लॉक करवाओगे 10% एडवांस देकर, उसी रेट पे आपको आगे की ज्वेलरी मिलेगी। तो हुआ ना बड़ी ऑफर। एक्सक्लूसिव ऐप ऑफर भी आपको ये कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बुकिंग्स कर रहे हैं जोया लुकास मोबाइल ऐप से, तो आपको 100 सिंगापुर डॉलर का डायमंड गिफ्ट वाउचर मिलेगा। और ये जो ऑफर है 7th of November यानी दिवाली से जस्ट पहले तक ही है, और ऑलरेडी बहुत कम दिन बाकी है। TNC अप्लाई मेरी जान। वीडियो मसीह 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ।

टू रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20. नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में
0: सबसे खूबसूरत चीज है अफवाह, गलत फहमी, झूठ जो सच से ज्यादा सच लगता है। एनीवेज, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एंड कई बार ऐसा होता है ना कि हम झूठ इतना रिपीटेटिवली सुन लेते हैं कि हमें लगता है कि यही सच है, और जो सच है वो तो झूठ है, और जो झूठ है वो तो सच है। ओ माई गॉड, मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ आपको बताते बताते, लेकिन ठीक है। हमें ऐसा लगने लगता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि जो हम देख रहे हैं वही सच है, जो हम सुन रहे हैं वही सच है। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, और बताना चाहूंगी कि बहुत सारे झूठों का एक झूठ श्री श्री झूठ जो है वो निकल कर आया था कि यामी गौतम आदित्य धर जो है मुंबई छोड़कर यामी गौतम के मायके यानी हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट हो जाएंगे ताकि उन्हें थोड़ा पीसफुल एनवायरमेंट मिले। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, ग्लैम की दुनिया तो ग्लैम की दुनिया होती है। तो यामी एंड आदित्य बॉम्बे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये मात्र एक अफवाह है जो कि आती ही रहती है मेरी जान। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर के साथ, डोंट गो एनीवेयर, मैं भी आती जाती रहती हूँ, चलता रहता है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट टाइम से ये सिलसिला।
2: दिस इज रेडियो मसी 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपर्ट इंडियंस, एनीटाइम एनीवेयर।

0: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Musti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration. ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। सो टिल 11th अक्टूबर तक आप कुछ तो सेविंग्स कर ही सकते हैं। कैसे भाई? देखो, फेस्टिव डेज आने वाले हैं, खर्चा तो ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है। सो व्हाई नॉट आप जस्ट स्वीट्स खरीदने वाले हैं, या आप अपने ऑफिस के कलीग्स अपने बिजनेस पर्पस से इन्हें बल्क में परचेज करने वाले हैं, इन सब में आपको बेनिफिट मिल सकता है। हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ मस्ती मॉर्निंग शो चल रहा है मेरी जान। एनीवेज, अगर मैं बात करूं शाही महारानी स्वीट्स कलेक्शन की, तो हर बार फेस्टिव डेज में आपके लिए फ्रेशली इन्हें क्यूरेट किया जाए है। और इस बार भी ट्रॉपिकल सनराइज ग्राम एंड गुड डिलाइट मैंगो सरप्राइज मिल्क केक डेट एंड नट बर्फी इनकी सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाली है। लेकिन अगर आप अर्ली बर्ड प्राइस ग्रैब करना चाहते हैं, जिसमें आपको $72+ में मिलेगा सेलिब्रेशन बॉक्स, एंड बाद में वो $78 का हो जाएगा, जिसमें 15 हैंड क्राफ्टेड मिठाई, 5 अलग अलग वेराइटीज और भी बहुत कुछ होने वाला है। नंबर टू अगर ऑप्शन बताऊं तो अर्ली बर्ड रेट है $98+ रॉयल सेवरी ट्रीट्स के, जिसमें आपको 4 जार्स ऑफ प्रीमियम नट्स मिलने वाले हैं, आर्टिसन कैंडल मिलने वाली है, मतलब एक ऐसा गिफ्टिंग ऑप्शन जिसका शायद आप इंतजार कर रहे थे। सो और भी बहुत सारी वैरायटी है जिसकी डिटेल्स आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। लॉग ऑन करो या ऑर्डर करो www.shahimaharani.com/royaldiwaliswits, एंड एटलीस्ट 3 दिन का जो ऑर्डर है वो एडवांस लगेगा, जिसके बाद आपको चीजें कंफर्म हो पाएंगी। तो चलिए चलिए चलिए क्विकली ऑर्डर करो एंड सुनते रहो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ हैं आप।
1: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी,
2: क्यों सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
3: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन जार्स टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी रॉयल मिठाई एंड नमकीन। Early bird prices from $72+ onwards until 11th October. For more details, call 6235-8840 or log on to shahimaharani.com.

0: और सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: पता है शादी कब करनी चाहिए? जब 1+1 2 नहीं 11 निकल कर आए। ऐसा मैंने फिल्मों में डायलॉग्स आते तो सोचा मैंने आपको चिपका के बता दूं जरा। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे अनुप्रभा के साथ। एनीवेज बताना चाहूंगी कि मूवीज में समटाइम्स ना बहुत सच दिखा दिया जाता है। इतना सच दिखा दिया जाता है कि जब वो हमारी लाइफ में होता है ना, हमें महसूस हो जाता है कि अरे क्या फिल्मी सीन हो रहा है हमारे साथ, आहा मजा ही आ गया। सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे अनुप्रभा आपको बताना चाहेगी, बहुत सारे फिल्मी सीन्स की बात होते होते ये निकल कर आई कि भाई क्रिकेट के स्टार विराट कोहली मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। मतलब इतनी अच्छी करते हैं कि अनुष्का शर्मा उनकी वाइफ जरा उन्हें एक्टिंग स्किल सिखा देना तो वो होलसम क्रिकेटर एंड एक्टर बन सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, उनके फेलो जो दोस्त हैं क्रिकेटर्स हैं, एंड रिसेंटली राहुल द्रविड़ जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर किसी की मिमिक्री करानी है ना तो विराट कोहली से बात करो, संपर्क करें उनसे। खैर मुझे लगता है कि जब इंसान एक आर्टिस्टिक फॉर्म में ढल जाता है ना तो वो नई नई चीज़ें ग्रैब करने लगता है, राइट? खैर आप भी ग्रैब कीजिए आने वाले गाने, बिकॉज वो आपके लिए ही तो प्ले हो रहे हैं यार। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव आपके लिए हमेशा एंटरटेनमेंट लाता है और लाता रहेगा। मैं आरजे अनुप्रभा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, मुलाकात करेंगे बहुत जल्द। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अपने का ख्याल रखिएगा।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट.

0: गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात और सी।
1: पर 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे। कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
3: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
2: कोई आवाज कोई साज, सिनेमा की दुनिया के किस्से, रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रचना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live. 25.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: Hello, hello, namaste and a very warm welcome to Radio Masti 24/7. That is right, वो वक्त शुरू हो चुका है जिसे हम कहते हैं Masti 90s mixtape का वक्त, nostalgia का वक्त, हमारी favorite show का वक्त. मैं हूँ आपकी 90s वाली आंसरा, बिल्कुल हाजिर हूँ यहाँ पर on time. मैं कुछ आज actions देती हूँ, ठीक है? Tell me whether आपके हाथ जो है automatically know what to do. नई notebook मिली है, फर्स्ट पेज इमीडिएटली यूज करना है? नहीं, पहले पेजेस को थंब से, मतलब अपने अंगूठे से फर पूरे नोटबुक का फैन करना है. मैं ना करते थे, एकदम फील अलग आती थी और साथ में खुशबू, एक विफ ऑफ खुशबू आया करती थी. नहीं, न्यू शूज जब आए सीधा पहन लेंगे? ऑफ कोर्स नॉट. बॉक्स को खोलेंगे, टिश्यू को हटाएंगे, दोनों शूज बाहर निकालेंगे, सोल को देखेंगे, उसको स्मेल करेंगे, फिर घर के अंदर चार चक्कर लगाकर सबसे पूछेंगे कि मम्मी ठीक लग रहा है, पापा ठीक लग रहा है, कैसा लग रहा है ये नया क्रिकेट बैट जब आया था आपका? सीधा मैच खेलने गए थे? प्लीज, पहले तो इमेजिनरी शॉट आपने ठा करके लगाया होगा, राइट? एकदम एक तेंदुलकर स्टाइल स्ट्रेट ड्राइव इन बेडरूम. बॉल तो है ही नहीं, बट शॉट पूरा सिक्सर. दैट्स द 90s वाला बचपन आई वांट टू ओपन टुडे, बिकॉज हमारी मेमोरीज सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की नहीं, दे आर अबाउट दीज टाइनी रिचुअल्स अटैच्ड टू देम. अ न्यू पेन हैड टू बी टेस्टेड बाय राइटिंग योर नेम, न्यू कलर पेंसिल्स को इमीडिएटली शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट अरेंज करना है, न्यू क्लोथ्स आए तो फैमिली के सामने मिनी फैशन शो की अच्छा है, उधर से मतलब आता था हाँ नहीं ऐसा वैसा, और कभी कभी ऐसा होता था कि वो लोग देख भी नहीं रहे होते थे, बट वी आर सो वेरी excited about everything. And same thing happened outside home as well. Sports boys जो है अपने ritual तैयार किया करते थे, bat को knock करना, grip को check करना, ball trousers पे rub करना as if international match चल रहा है वहाँ पे. Fashion का अपना ritual था, market में sunglasses try किए, mirror में देखा, and then side profile भी check किया, because apparently frontal face wasn't enough information. And cinema, boss 90s Hindi films created rituals without even trying. A film got released Monday the स्कूल में डायलॉग सर्कुलेट, सॉन्ग हिट हुआ, नेक्स्ट फैमिली फंक्शन में somebody's already prepared the steps. हीरो का लुक worked. बाबर को जो है यानी कि एक्सप्लेनेशन जो है वो देना शुरू करते कि एकदम हीरोइन का आउटफिट जैसे हम टेलर मास्टर को दिया करते थे, एंड या स्लीव्स थोड़ी ऐसी, एंड म्यूजिक के भी रिचुअल्स हुआ करते थे. यू डिड नॉट जस्ट लव अ सॉन्ग, यू वेटेड फॉर इट, यू रिकॉग्नाइज्ड इट फ्रॉम द फर्स्ट टू सेकेंड्स, स्टॉप्ड व्हाटएवर यू वर डूइंग एंड समटाइम्स शाउटेड फ्रॉम अनदर रूम, अरे मेरा वाला गाना. 90s के वो हसीन कमाल के दिन. मैं 90s वाली आंसरा अगले 3 घंटे आपको इन्हीं दिनों में, हम लोग घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या है ना. लेट्स गो.

0: some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
1: It's a Masti Partner event.
2: Garam kadahi, bhunta hua besan. वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी,
3: क्यों सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
4: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। Shahi Maharani's Royal Mithai and a Namkeen. Early bird prices from $72 plus onwards until 11th October. For more details, call 6235-8840 or log on to shahimaharani.com.
5: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
6: वेलकम बैक टू मस्ती 90s मिक्सटेप। मैं हूं आपकी 90s वाली यात्रा यहां पर आपके साथ। भाई 90s के घर के अंदर एक यूनिवर्सल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, याद है आपको? अगर नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला देती हूं। नहीं, ये कोई मेजरिंग स्पून नहीं था, ना ही कोई मेजरिंग कप था, कोई मार्किंग्स नहीं थी, ये था बॉटल का ढक्कन, याद आया? एंड समहाउ हर लिक्विड का अपना ढक्कन का मैथमेटिक्स था, यानी कि जैसे मम्मी बाथरूम में एक ढक्कन डेटॉल डाल देना पानी में, बस कितना पानी, बकेट फुल या हाफ पता नहीं, ढक्कन छोटा है या बड़ा पता नहीं, दीज आर ऑल इररिलेवेंट क्वेश्चंस। एक ढक्कन मतलब एक ढक्कन, और डेटॉल का तो पूरा रिचुअल था, बॉटल खोलो और उसकी एक वो जो अनमिस्टेकेबल सी स्मेल थी, कैप में केयरफुली पोर करो, थोड़ा सा हाथ हिल गया तो एक्स्ट्रा निकल गया, आप क्या करें, वापस बॉटल में डाले? नहीं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया, और वो मिल्की वाइट सा पानी बनते ही वो जो सेटिस्फेक्शन आता था, है ना, अब जर्म्स ऑफिशियली डर जाएंगे, ऐसी वाली फीलिंग आती थी। फिर आता था फिनाइल, दो ढक्कन फिनाइल डाल दो पोछे वाले पानी में, ये था इंस्ट्रक्शन। एंड अगेन इंडियन हाउस होल्ड साइंस हैड स्पोकन, फ्लोर कितना बड़ा है, बकेट कितना है, डजंट मैटर, दो ढक्कन, केस क्लोज्ड। शैम्पू में भी अपनी इंजीनियरिंग थी, बॉटल हाथ में बहुत ज्यादा मत लेना, तो पहले कैप में शैम्पू, फिर कैप से हाथ पर, हथेली पर मतलब, और अगर थोड़ा शैम्पू कैप के अंदर चिपक गया तो उसमें पानी डालो, शेक शेक शेक, एंड वो भी सीधा सर पे। बॉस प्रोडक्ट वेस्ट करना अलाउड नहीं था 90s में, एंड मेडिसिंस वो सिरप की बॉटल के साथ, कभी कभी प्रॉपर मेजरिंग कप मिला तो उसको लग्जरी माना जाता था, वरना मम्मी का मेजरमेंट आधा ढक्कन, मतलब कि मम्मी की आंखों में बिल्ट इन मिलीमीटर का कैलिब्रेशन ऐसा था कि मैं क्या ही बताऊं। और बच्चे के लिए सबसे डेंजरस इंस्ट्रक्शन, बेटा एक ढक्कन डाल देना, बिकॉज नाउ यू हैव बीन हैंडेड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू पोर स्लोली, द लिक्विड राइजेस ऑलमोस्ट टॉप तक, एंड देन यू आस्क मम्मी इतना, एंड दूर से आवाज आती है, हाँ हाँ हाँ, बस बस बस बस, टू लेट, क्योंकि वो तब तक ओवरफ्लो हो जाता था। ऐसा हमेशा हमारे घर में ये सीन चल रहा होता था, एंड आई थिंक दैट्स सच अ स्पेसिफिक होम मेमोरी, बिकॉज वो ढक्कन टेक्निकली सिर्फ बॉटल क्लोज करने के लिए ही बना था, बट इंडियन हाउस होल्ड लुक्ड एट इट एंड सेड, भाई कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है, अब तुम लिड भी हो, मेजरिंग कप भी हो, समटाइम्स मिक्सिंग बोल भी बना दो इसको, नो नंबर्स, नो प्रिसाइज लाइंस, जस्ट एक ढक्कन, आधा ढक्कन, दो ढक्कन, एंड समहाउ कपड़े साफ हुए, फ्लोर साफ हुआ, हेयर वॉश हो गया, घर चल गया। 90s होम मैनेजमेंट का मेट्रिक सिस्टम अलग ही था, लाइक बाय गॉड की कसम, सेंटीमीटर, लीटर, मिलीलीटर, और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, ढक्कन। है ना, चलो भाई, ढक्कन के नाम, अगला गाना ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

कसर से कसर की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। चलिए 90s के सिनेमा के पास से चलते हैं। आपको एक सीन इमेजिन कराऊं। ओह बाय द वे, ये है मस्ती 90s मिक्स टेप। मैं हूं 90s वाली अंतरा यहां पर आपके साथ। भाई फिल्म एक 90s की उठाते हैं जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 8 महीने का हेक्टिक वर्क उसमें हो चुका है। रिलीज पास आ रही है, एडिटिंग रूम्स में फाइनल टचेस चल रहे हैं एंड एट दिस पॉइंट मोस्ट ऑफ अस वुड प्रोबेबली से कि भाई अब बस एक्सपोर्ट कर दो, हो गया, बन गई होगी फिल्म। बट डायरेक्टर मणि रत्नम जनवरी 1995 की एक फैसिनेटिंग ऑन ग्राउंड रिपोर्ट देती हूँ, रिटन व्हाइल बॉम्बे वाज एक्चुअली बीइंग फिनिश्ड। जी हाँ, बॉम्बे मूवी की मैं बात कर रही हूँ। वो रिपोर्टर साहब जो है वो ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, मणि रत्नम लिटरली मूविंग बिटवीन एडिटिंग रूम्स इन हिज सॉक्स। एक रील जो है वो प्ले हो रहा है, रेन कैन बी हर्ड, एंड तभी मणि सर इंटरप्ट करते हैं। ट्रेन का साउंड ना बहुत छोटा है, बहुत छोटा, लाइक टू मेटालिक, आई एम नॉट लाइकिंग इट। देन अनदर शॉट कम्स अप एंड नाउ ही इज क्वेश्चनिंग, इज देयर टू मच रेड इन दैट शॉट। आई मीन वाओ, फिल्म में कम्युनल वायलेंस, लव स्टोरी, ह्यूज इमोशनल सीक्वेंसेस, ए आर रहमान साहब का म्यूजिक, और रिलीज के बिल्कुल करीब डायरेक्टर का ब्रेन जो है अभी भी यही कह रहा है कि यार ये बारिश सही नहीं सुनाई दे रहा है, फील नहीं आ रही है। That's filmmaking obsession at another level altogether. And once you know this, Bombay ko aap dobara se dekh sakte ho us movie ko. Because suddenly you realize how much of what you are feeling has been designed through tiny things you may never consciously notice. Color, sound, rain, silence, background score, the mood of a frame. And Mani Ratnam Sahab was not just relying on imagination for the darker portions either. That same contemporary jo hai, ye report kehti hai that he spent weeks researching ye Bombay ke riots through newspapers, magazines and video footages. He visited riot affected areas, photographed kiye location, spoke to people who had lived through it, even interviewed journalists who had covered the violence. So when we remember Bombay, of course we remember Manisha Koirala, Arvind Swamy. Oh my God, I loved Arvind Swamy. एक टाइम पे क्रश हुआ करता था मेरा, बहुत ही सुपर डुपर। देन द सॉन्ग्स, तू ही रे, कहना ही क्या, एंड देन हम्मा हम्मा का वो बीट। बट देन another one, like A.R. Rahman jo sahab hai, unhone kaha that his music was not simply an album of good songs sitting separately from the movie at that time. The intention was for the music to mesh with the film itself. And suddenly, that explains a lot, doesn't it? Kyunki Bombay ka music sirf songs mein nahi rehta. The background score also becomes another character. And next time somebody says, ki are yaar, audience ko kya pata chalega ki barish ka sound slightly metallic hai. Maybe that's exactly the point. Audience ko consciously pata nahi chalega, but perhaps they'll feel that something is not right. And somebody like Mani Ratnam sir is sitting in an editing room in socks days before release, obsessing over precisely that. And that's कमाल का जो है बिहाइंड द सीन, जो मुझे देने में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी आपको, इतनी सारी बातें और हम्मा हम्मा ना हो, या कहना ही क्या प्ले करूं, या तू ही रे, एक्चुअली लेट्स सी ये वाला, ओके okay.

पैसों से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। वेलकम बैक टू मस्ती 90s मिक्सटेप। आप हो 90s वाली अंतरा के साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7। 90s के घर में एंटरटेनमेंट के लिए टीवी ऑन करना जरूरी बिल्कुल भी नहीं था। समटाइम्स यू जस्ट नीडेड एक खिड़की और उसमें लगी हुई आयरन की वो ग्रिल, बिकॉज दैट वॉज नॉट मेयरली एक खिड़की, दैट वॉज हमारा लाइव नेबरहुड का चैनल। नीचे वाले ग्रिल बार पर पैर रखकर ऊपर वाले पे हाथ, चेहरा दो बार्स के बीच में ऐसे टिका के चिन परफेक्टली एडजस्ट करके ब्रॉडकास्ट शुरू किया जाता था मेरे दोस्त, कि भाई मम्मी सब्जी वाला आ गया है, पापा शर्मा अंकल देखो कहां जा रहे हैं स्कूटर में बैठ के, एंड कोई गाड़ी अगर रिवर्स कर रही है उसकी एक पर्टिकुलर गाड़ी की साउंड हुआ करती थी। इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस जीरो, रिपोर्टिंग का एंथुसियाज्म ब्रेकिंग न्यूज लेवल। और अगर गली से जो है धुमता ना ऐसा कुछ ऐसी यू नो बरातों वाली आवाज आ गई, ओ माय गॉड, विद इन 5 seconds पूरा का पूरा घर उस विंडो की ग्रिल पे टिका हुआ दिखता था कि अरे किसकी किसकी बारात जा रही है, किसकी शादी है, नोबडी नोज, डजंट मैटर। अब हम इन्वेस्टेड हो चुके हैं इसमें, ब्राइड हमारी रिलेटिव नहीं है, ग्रूम को कभी हमने देखा नहीं है, बट बैंड कौन सा गाना बजा रहा है, कौन अंकल सबसे ज्यादा नाच रहे हैं, घोड़ी कहां जाके रुक गई, फुल कवरेज हमें लेना है। देन देयर वाज रेन, यानी कि बारिश वाली रेन। यप, फर्स्ट फ्यू ड्रॉप्स, मिट्टी की वो स्मेल, रोड का वो कलर डार्क होना, और हम ग्रिल पकड़कर बस बाहर देखते हुए हाथ बार्स के बीच से निकल कर रेन को यू कैच करना, फिर वो गीले गीले हमारी उंगलियां अंदर लाके देखो देखो बारिश बारिश हो रही है। एज अ फैमिली नीडेड फिजिकल एविडेंस, एंड द विंडो बिकेम इवन मोर एक्साइटिंग व्हेन बाहर से कोई आवाज सडनली गॉट लाउडर। मतलब कि अगर मोहल्ले में दो लोगों के बीच में तूतू मैं हो गई, ओ माय गॉड, कर्टन को थोड़ा सा साइड में, ग्रिल पोजिशन ऑक्यूपाइड, एवरीबडी प्रिटेंडिंग कि हम तो बस हवा खा रहे, सुन कौन रहा है। हाँ, हवा में पूरा प्लॉट सुनाई देता था, एंड द वेंडर्स हैड देयर ओन साउंडट्रैक, दूर से आवाज आती थी, वर्ड्स समझ नहीं आए बट मम्मी समहाउ इंस्टेंटली रिकॉर्ड कर लेती थी कि भाई सब्जी वाला आ रहा है, आई डोंट नो हाउ, टू मी इट साउंडेड लाइक ऐसा करके और वॉर्म्स जो है वो सुनती थी कि अरे आलू ले लो, धनिया ले लो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, राइट। नाउ अब द बेस्ट पार्ट, योर फ्रेंड जो है अपीयर्स डाउनस्टेयर्स, कोई फोन नहीं है उस टाइम पे, कोई मैसेज नहीं कर सकता, बस दे सिंपली लुक अप एंड शाउट आपका नाम अंतरा, एंड यू अपीयर अपने खिड़की पर लाइक रॉयल फैमिली ऑन द पैलेस बालकनी, कि क्या है, नीचे आओ, रुको, पूछना पड़ेगा। एंटायर कॉन्वर्सेशन कंडक्टेड थ्रू दोज खिड़की एंड फ्लोर्स टू फ्लोर्स। प्राइवेसी वॉज नॉट पार्ट ऑफ द टेलीकॉम पैकेज दो, एंड मे बी दैट्स वाई दो windows felt so alive. We were not looking at curated feeds. We were looking at whatever happened to be happening. कोई साइकिल पास कर रहा

कौन कौन कौन है ये कौन अभी समझ में आ जाएगा कौन है ये। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराव के साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई देखिए एक्टर्स जो है किसी भी फिल्म के लिए 90s में भी दे यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर वीक्स एंड समटाइम्स मंथ्स एज वेल कि कैरेक्टर की वॉक कैसी है, आवाज कैसी है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, रिएक्शंस कैसे है, सब सेट। नाउ इमेजिन शूट के सिर्फ 15 मिनट पहले एक्टर डायरेक्टर के पास जाकर बोले कि नहीं यार ये कैरेक्टर ना ऐसे काम नहीं करेगा। एंड दैट्स प्रीटी मच व्हाट हैपेंड विद मनोज बाजपेयी ऑन द सेट्स ऑफ द मूवी कौन क्वेश्चन मार्क। अरे कौन सी मूवी कौन, अरे 1999 में राम गोपाल वर्मा की कौन, अनुराग कश्यप की राइटिंग, उर्मिला मातोंडकर इनसाइड दैट लोनली हाउस, ओके बाहर तूफान घंटी बजती है तभी, एंड एंटर्स दिस एक्सट्रीमली स्ट्रेंज इरिटेटिंग फनी अनसेटलिंग मैन समीर ए पुरनावाले। Now here's the fascinating part. So Manoj Bajpayee jo hai has said that the character he had originally prepared was the way Ram Gopal Verma wanted him to play it. Much more serious it was. But Bajpayee sahab hamare convinced nahi the. He kept thinking if I enter this already dark film as another serious mysterious man, film flat ho sakti hai. So on the day of the shoot, with roughly 15 minutes before he had to perform, he went to Ram Gopal Verma, Manoj Bajpayee and Anurag Kashyap and said, let me show you something different first. And then Manoj Bajpayee performed apna version of the character. More talkative, more irritating, more unpredictable. That slightly berserk wali energy we eventually saw on the screen, right? Now, according to Manoj Bajpayee, sir, Ram Gopal Verma and Anurag immediately approved it. Now, think about that one decision does to this movie Kaun, because Manoj sir ka jo character hai jab enter karta hai and for a while you don't know what box to put him in. Is he funny? Is he dangerous? Stupid hai? Clever hai? Jhoot bol raha hai? Sach bol raha hai? Kya hai ye banda? And then of course Manoj Bajpayee explained the logic beautifully. If his character remained completely serious and audience ka attention jo hai would stay only with Urmila, uski craziness made us keep watching him too. Ah bhai ye banda na अलग ही लेवल पे है, अलग ही लेवल। सीरियसली 15 मिनट पहले कौन करता है ये सारी चीजें, बट देन ऐसे ही लोग जो है हिस्ट्रियां लिखते हैं और ऐसे ही लोग लेजेंड भी बनते हैं। कौन कौन, मनोज बाजपेयी द लेजेंड, वाह वाह वाह वाह, मैं भी लेजेंड, ये हमारा मस्ती मीडिया 24/7 भी लेजेंड, और लेजेंडरी गाना कम नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप। वेलकम बैक, स्वागत है आपका वापस से 90s की इस खूबसूरत सी दुनिया पे जिसको कहते हैं हम मस्ती 90s मिक्स टेप और रेडियो मस्ती 24/7। मैं 90s वाली अंशरा आपके साथ। सो 90s के चाइल्डहुड में सेल्फ कंट्रोल टेस्ट करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका था, एटलीस्ट मेरे पास तो ये था। आई एम श्योर आपको भी बहुत ही ज्यादा ये रिलेटेबल लगेगी। याद, आपको एक बेडशीट या अगर पिलो कवर दू तो उसमें से एक छोटा सा लूज थ्रेड अगर बाहर निकाल दू बस गेम ओवर, बिकॉज टेक्निकली आपको उससे करना कुछ नहीं है एंड यू नो दैट। स्पेसिफिकली आपको इंस्ट्रक्शन मिले हुए घर के बड़ों से कि धागा खींचना मत, बट वो धागा वहां पे पड़ा है, अकेला है, अवेलेबल है, ऑलमोस्ट कॉलिंग यू कि अंतरा बस थोड़ा और खींच के देख कि होता क्या है, एंड ऑब्वियसली यू एंड अप पुलिंग इट। बस 1 सेंटीमीटर, नथिंग हैपेंस। इंटरेस्टिंग, थोड़ा और खींचो तो अब धागा 5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज वेयर अ सेंसिबल पर्सन वुड स्टॉप। बट 90s के जो चाइल्डहुड में हमारे एक्सपेरिमेंट के लेवल ही अलग थे। लेट्स सी ये लंबा कितना है। सो यू कीप पुलिंग एंड सडनली यू आर watching the stitching disappear in real time. अरे वाह, बड़ा ही सेटिस्फाइंग था ये। 10 सेंटीमीटर, 20, 30, अब आपके हाथ में इतना धागा है कि टेक्निकली फ्रेंडशिप ब्रेसलेट उसका बन सकता है, एंड देन यू लुक एट द पिलो कवर। ओ साइड की जो सीम है ना, थोड़ी सस्पिशियसली ओपन सी हो गई है। नाउ यू आर इन पैनिक मोड, धागा वापस अंदर पुश करने की कोशिश एज इन स्टिचिंग रिवर्स में इंस्टॉल हो जाएगी कि यार अंदर चले जाना है, प्लीज अंदर चली जाना ना। सो प्लान बी, एविडेंस को डिस्पोज करना है, थ्रेड को तोड़ने की कोशिश। बट ऑब्वियसली जब खींचना था तब इजीली निकल रहा था, अब तोड़ना है तो वो अब स्टील केबल बन चुका है, दांत इन्वॉल्व हो गए हैं, ट्विस्ट इन्वॉल्व हो गया है, नाखून इन्वॉल्व हो गए हैं। फाइनली समहाउ ब्रेक किया, लिटिल पीस मैट्रेस के नीचे छुपाया, पिलो को स्ट्रेटेजिकली रोटेट किया, डैमेज वाली साइड की वॉल की तरफ डाल दिया, क्राइम सक्सेसफुली कवर्ड अप। अंटिल मम्मी या हमारी जो इन्वेस्टिगेटर द ग्रेट हर घर में, नेक्स्ट मॉर्निंग पिलो कवर चेंज करते हुए कि ये सिलाई कैसे खुल गई है, एंड इमीडिएटली या लीगल डिफेंस आता था हमारा सीधा, मुझे नहीं पता, रियली वी डिडंट नो। Meanwhile, 40 centimeters का थ्रेड आपके स्कूल शॉर्ट्स के पॉकेट से एविडेंस दे रहा है, एंड इट वॉज नॉट ओनली पिलो कवर्स, बेडशीट का कॉर्नर, टॉवल का एज, स्वेटर का वो जो वूल है, कर्टन की स्टिचिंग, एंड इफ समटाइम्स समथिंग वॉज स्टिकिंग आउट आवर फिंगर्स हैड अ प्रोफेशनल काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन टू इन्वेस्टिगेट। समटाइम्स थ्रेड पुल करते करते फैब्रिक बंच अप हो जाता था, तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन को स्मूथ करने लग जाते थे कि यार तू ठीक हो जा, तू ठीक हो जा। बहुत सारी टेक्सटाइल सर्जरी चल रही है, एंड द मोस्ट डेंजरस लूज थ्रेड द वन दैट केम आउट स्मूथली, बिकॉज रेजिस्टेंस मिल जाए तो बच्चा रुक सकता है, बट इफ इट गोज लाइक द सेटिस्फैक्ट्री वाला टर्र, yeah, it's not thread anymore. It's 90s ke kid ka entertainment ban chuka hai wo. Aayi, yaad aayi? Aayi na. I know, man. Radio Masti 24/7 par yahi hai hamara kaam. Let's go take a 90s wala musical break.

0: इस दीपावली शॉपिंग ही, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon of India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition, celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
1: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी।
2: क्यों? सोचते ही आया ना याद, वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
0: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानीज रॉयल मिठाई एंड नमकीन। अर्ली बर्ड प्राइसेस फ्रॉम $72 प्लस ऑनवर्ड्स अंटिल 11th October. फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू शाही महारानी.com.

पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। अनदर ब्यूटीफुल वन, आई मीन एक के बाद एक ऐसी ही लाइन से यादें ताजा हो जाती है मेरी जब जब मैं करती हूँ मस्ती 90s मिक्स टेप। मैं हूँ 90s वाली अंतराल के साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7। सो 90s में अगर घर में बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स का नया टिन आया है तो टेक्निकली वो ब्रेकफास्ट आइटम नहीं था, वो था इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल। बिकॉज न्यू टिन खोलना मतलब पहले आउटर वाला लिड निकालो और फिर सामने आता था असली चैलेंज, अंदर का मेटल सील। अब उसको देखकर घर में किसी ने कभी ये नहीं कहा कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं कि कैसे करना है। प्लीज सीधा चम्मच लाओ, एक स्टर्डी सा स्टील स्पून आया, उसका जो एज मेटल लिड का साइड में उसको फिट किया हमने, थोड़ा सा प्रेशर डाला एंड खटाक एक कॉर्नर उठा। विक्ट्री अभी पूरी नहीं आई है दोस्त, अभी हमारे हाथों पे अभी तो ऑपरेशन शुरू हुआ है। स्पून को थोड़ा और आगे शिफ्ट करो, फिर खटाक एंड और थोड़ा, फिर खटाक and slowly that lid starts lifting. Of course, बच्चे साइड में जो है हमेशा हम लोगों को मौका चाहिए होता था कि ये कूल चीज तो हमें करनी ही करनी है, बट हमें दिया नहीं जाता था फॉर द रीजन क्योंकि कहा गया था कि हाथ कट जाएगा। सो 90s चाइल्डहुड में कुछ जॉब्स क्लियरली अडल्ट क्लियरेंस मांगती थी एंड न्यू बॉर्नविटा टिन ओपनिंग वॉज डेफिनेटली वन ऑफ देम। बट द बेस्ट मोमेंट वॉज जब फाइनली वो सील उठती, पप करके एक आवाज आती एंड सडनली दैट स्मेल फ्रेश बॉर्नविटा या फ्रेश हॉर्लिक्स की, वो कॉन्सेंट्रेटेड एंड मॉल्टी एंड द चॉकलेटी पाउडर वाली स्मेल जो एकदम फेस पे आती थी, नेचुरली फर्स्ट इंस्टिंक्ट ऐसे करके पूरा नोज ऑलमोस्ट टिन के अंदर एंड पाउडर बिल्कुल अनटच्ड, परफेक्टली फ्लैट, ब्रांड न्यू, इट लुक्ड सो सैटिस्फाइंग कि स्पून डालने का भी मन नहीं करता था उसमें। बट समबडी हैड टू ब्रेक द सरफेस राइट, सो द फर्स्ट स्पून गोज इन and now it's officially open for business. फिर उसके बाद measurement system आता था कि दो स्पून आप एक स्पून डालते, proper mountain बना के उसको निकालते, इतना इतना भर के नहीं, अरे स्पून बोला था, you never specified topography of it. Then came the real temptation, powder को directly खाना, correct, you got me right, बस थोड़ा सा dry bonvita spoon पर, फिर वो मुंह में and immediately वो फाकने वाली जो feeling आती है, अच्छा ये powder ना हमारे मुंह के पैलेट पे ऊपर की तरफ चिपक जाता था, याद है आपको, नाउ उसको अपने टंग से स्क्रेप करना, बट स्टिल गोइंग बैक फॉर अनदर पिंच बिकॉज अपेरेंटली फर्स्ट एक्सपीरियंस से हमने कुछ सीखा ही नहीं था। एंड हॉर्लिक्स बॉर्नविटा का टिन खत्म होने के बाद प्लीज डोंट अज्यूम उसका करियर खत्म हो गया, इंडियन हाउस होल्ड HR डिपार्टमेंट इमीडिएटली उसको रीअसाइन कर देता था, अगले महीने ओपन द सेम टिन बॉर्नविटा, नहीं या तो उसमें दाल या राजमा या चने या बटन्स या स्क्रू या रैंडम किचन आइटम्स जिसकी आइडेंटिटी सिर्फ मम्मी को पता थी वो मिल जाएंगे। सो यू कुड नेवर ट्रस्ट द लेबल, टिन सेज हॉर्लिक्स बट यू ओपन एक्सपेक्टिंग चाइल्डहुड न्यूट्रिशन इन फॉर्म ऑफ मे बी तूर की दाल, है ना, प्लॉट ट्विस्ट। But the brand new thin moment and the steel ka spoon and the metal ka seal ka wo khatak khatak, all of this, such a tiny thing yet somehow I can still hear it while talking to you. है ना, टूल किट की जैसे फीलिंग आ गई, फुल ऑन रेडियो बस्ती 24/7 पर ओ फो ये यादें, आई लव देम।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया थनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर। गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
2: प्रेम, निशा,
3: राहुल,
2: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
4: वेलकम बैक टू ऑफ कोर्स मस्ती 90s मिक्सटेप में अंतरा आपके साथ। यहाँ पर 90s के सिनेमा की तरफ थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जाते रहना चाहिए उस गलियारे में भी। कभी कभी 90s में डायरेक्टर स्क्रीन प्ले नहीं लिख रहा होता था, अपना बचपन रिक्रिएट कर रहा होता था। इस बार कहानी इन क्वेश्चन इज खामोशी द म्यूजिकल। जी हाँ, इस मूवी में एक ऐसा मोमेंट है जो संजय लीला भंसाली सर के अपने ही खुद की जिंदगी से अपेरेंटली सीधा उन्होंने स्क्रीन पर उतार दिया। 1996 भंसाली साहब का हमारा डायरेक्टोरियल डेब्यू, नाना पाटेकर, सीमा बिस्वास एज जोसेफ एंड फ्लावी, एक डेफ एंड म्यूट कपल। ओके, मनीषा कोयराला उनकी बेटी एनी, सलमान खान एज राज, एंड यस टाइटल खामोशी। बट फिल्म वॉज फिल्ड विथ म्यूजिक, बाहों के दरमिया एंड माई फेवरेट आज मैं ऊपर एंड देर आर मोर, जाना सुनो हम तुम पे मरते हैं। बट टुडे एक ग्लैमरस सॉन्ग या ग्रैंड सेट नहीं, एक कंपैरेटिवली सिंपल सीन। फिल्म में जो है फ्लावी अपने बच्चों के साथ डोर टू डोर जाके चीजें बेचती है। ऑन स्क्रीन इट टेल्स यू समथिंग अबाउट दिस फैमिली का स्ट्रगल, बट बिहाइंड द सीन रिपोर्टेडली सिट्स अ मच मोर पर्सनल मेमोरी। भंसाली सर जो है ही वॉज टॉकिंग इन दिस इंटरव्यू अबाउट ग्रोइंग अप विद फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड अकाउंट्स ऑफ खामोशी जो है कनेक्ट दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस टू हिज ओन चाइल्डहुड, जब वो खुद अपनी मम्मी और अपनी बहन ये तीनों वुड सिमिलरली गो अराउंड सेलिंग थिंग्स। सो इयर्स लेटर फर्स्ट फिल्म डायरेक्ट करते वक्त ही पुट्स अ वर्जन ऑफ दैट मेमोरी इनसाइड दिस मूवी एंड सडनली वो सीन थोड़ा डिफरेंट लगता है, डजंट इट? बिकॉज यू आर नॉट मियरली वॉचिंग अ डायरेक्टर से ओके फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, लेट्स राइट अ सीन टू एस्टैब्लिश दैट। You are potentially watching him say, I know what this looks like. I have lived something like this. And Khamoshi being his debut makes it even more interesting. Because think of Sanjay Leela Bhansali we associate with cinema today. Enormous sets, perfectionist, perfect symmetry, rich colors, costumes, choreography, spectacle, right? But his first film was deeply tied to a much more intimate and emotional world, family and silence and music, communication, parents and children. And there are traces of his own home and childhood inside it. That, for me, is the fascinating part of 90s ka cinema. Sometimes we keep looking behind the film for who was the first choice, who rejected the role, kaun sa song baad mein add kiya gaya. But sometimes the bitter secret is not in the casting room. It's in director ki memory. The childhood experienced it somewhere quietly for years, and then the child grows up and becomes a filmmaker, writes a scene, puts actor in front of camera, and something that once belonged to a family's private struggle becomes a part of a film watched and loved till date. 90s ka magic, my love. 90s ka magic. Aaj main upar yahi gana ab hum sunenge, play karenge, enjoy karenge saath saath on Radio Masti 24/7.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: Oh my God, I don't think so. अब ऐसा कोई करता होगा, but well, एक और 90s वाली याद ताज़ा करते हैं और मस्ती 90s mixtape on Radio Masti 24/7. मैं 90s वाली अंतरा आपके साथ, और 90s में अगर कोई बहुत pretty सा flower या interesting सा पत्ता मिल गया ना, हम उसकी फोटो नहीं लेते थे, जो कि आज की डेट में हर चीज की फोटो लेकर हम लोग डाल देते हैं, राइट? हम उसको किताब में डाल देते थे, बिकॉज अपेरेंटली चाइल्डहुड का लॉजिक था इसको प्रिजर्व करना है। कैसे? डिक्शनरी लाओ, प्रेफरेबली घर की सबसे मोटी वाली। गार्डन से एक छोटा सा अगर फ्लावर नीचे गिर गया है तो उसको उठाओ, या स्कूल से घर आते हुए कोई परफेक्ट सी लीफ मिल गई हो, पहले उसको केयरफुली इंस्पेक्ट करते थे कि ये वाला अच्छा है, इसका शेप मत खराब करना। एंड देन द बुक ओपन, बीच के पेजेस चूज करो, फ्लावर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, पेटल्स जेंटली स्प्रेड करने हैं, बुक को क्लोज कर देना है, एंड देन वेट डालना है उस पे। उस डिक्शनरी के ऊपर दो और किताबें डालो, मे बी द एटलस, मे बी कोई डैड की जॉइंट रेफरेंस बुक। बेसिकली फ्लावर प्रिजर्व नहीं कर रहे, उसका जिम वर्कआउट वहां पे चल रहा है। एंड देन केम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कि अब कुछ दिन इसको खोलना नहीं है, विच ऑब्वियसली मेंट नेक्स्ट मॉर्निंग थोड़ा सा तो जाके एक बार चेक करना बनता है। बुक को धीरे से ओपन किया, अभी हुआ नहीं, ऑफकोर्स स्टिल फ्लावर। Close again. 2 days later. Ab. Patience हमारे strong points कभी भी नहीं थे. But sometimes you actually forgot about it. Weeks passed, months passed, and one random afternoon you open that book looking for something completely different. And oh my God, वो flower, except अब वो bright pink या yellow नहीं है, flat, delicate, थोड़ा सा brown, almost paper जैसा. And suddenly you remember, अरे हाँ, ये तो उस दिन मिला था ना. That's the magical bit. The flower became a tiny time ka stamp. Some came from school, some from a holiday, some from someone's garden. Somebody gave you one maybe, and maybe that one got extra special treatment. Different page, very carefully placed, nobody allowed to touch. And if you were slightly filmy, bilkul mere jaise, perhaps there was even thoda sa handwritten date next to it. हाँ बिल्कुल, लीव्स जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होती थी, स्पेशली दोस परफेक्ट वंस जहां पे उसकी ना वेन्स दिखाई देती थी। प्रेस देम प्रॉपरली आफ्टर अ वाइल एंड इट लुक लाइक समथिंग फ्रॉम अ बायोलॉजी का प्रैक्टिकल। एंड एक और बहुत ही खूबसूरत सी बात थी, इमोशन देखिए ना कैसे अटैच हुआ करते थे इसमें। आई विल टेल यू हाउ, बिकॉज अगर वो फ्लावर आपके क्रश ने दिया है, ठीक है, and now this is the only way you can preserve that thing with you. And how would you do that? You will keep it in the book, and then बहुत time के बाद जब भी वो किताब खोलो और वो rose, सूखा हुआ rose आपको दिखे, नजर आए वहां पे, उसको हाथ में उठाया and उसको ऐसे turn करते हुए वो moment याद किया कि oh my God, what special feeling I felt at that point of time जब उसने मुझे ये flower दिया था। Maybe we are reliving that moment with that सूखा हुआ rose जो कि book में रख दिया था। हाय, मैं हूँ फिल्मी क्या

प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप। इस रस्सी से तो सभी का सामना हुआ ही होगा, एटलीस्ट मैं ऐसा मानना चाहूंगी। रेडियो बस्ती 24/7 पर अंतरा आपके साथ मस्ती 90s मिक्सटेप आप सुन रहे हो। 90s के घरों में जैसे कि मैं ऑफकोर्स घुसी जाती हूँ, लॉन्ड्री सिर्फ वॉशिंग का काम नहीं था, इट इन्वॉल्व सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि कपड़े तो धुल गए हैं, अब असली सवाल रस्सी जिसपे सूखेगी इतना वेट जो है वो ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी। नाउ बालकनी हो, टेरिस हो, कोर्टयार्ड हो, एक एंड से दूसरे एंड तक क्लोथ लाइन जो है टाई की जाती थी। नॉर्मल क्लोथ्स तक तो सब कुछ ठीक था, शर्ट, फ्रॉक, टॉवल, कुर्ता, एंड देन आती थी वो गीली गीली भारी भारी बेडशीटें। बस गेम ओवर वहीं पे, बेडशीट रस्सी पर गई नहीं, और स्लोली ये पूरी जो वो जो रस्सी हुआ करती थी ना, सेंटर से नीचे झुक जाती थी। एक बेडशीट ने सबका मोराल ऐसा मतलब नीचे लेकर जाता था, अब इमीडिएट रिएक्शन कि अरे नीचे लग जाएगी, बिकॉज वेट क्लोथ्स टचिंग द फ्लोर इज अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि अभी अभी धो के आए हैं। एंड दिस इज वेयर घर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ड्री इक्विपमेंट एंटर्ड, लंबा सा वो बैम्बू वाला पोल। वो बैम्बू पोल कहाँ रहता था, नोबडी रियली नोज, बट व्हेनेवर रस्सी ऐसी सैग सी करने लगती थी ना, समबडी मैजिकली प्रोड्यूस्ड इट, पोल को सेंटर के नीचे लगाओ ठक करके एंड पुश इट अपवर्ड्स, एंड सडनली दिस क्लोथ लाइन वाज बैक एट रिस्पेक्टेबल ऑल्टीट्यूड। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व, बट मम्मी वॉज नॉट डन, बिकॉज लॉन्ड्री हैंगिंग इटसेल्फ हैड अ सिस्टम, हैवी टॉवल एक साइड, नहीं उधर ऑलरेडी बेडशीट है तो शिफ्ट करो टॉवल को, जीन्स इधर जाएगी, शर्ट उधर जाएगी, छोटे कपड़े बीच में आएंगे। बॉस, शी वॉज नॉट ड्राइंग क्लोथ्स, शी वॉज कैलकुलेटिंग लोड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड वो गीली जीन्स, ओहो, दोस थिंग्स वेड अप्रोक्सीमेटली सेम एज अ स्मॉल किड। हैंग वन पेयर एंड रस्सी कहती थी कि मैं तो रिजाइन कर रही हूँ, तुम लोगों को जो करना है कर लो। देन केम द क्लिप्स, प्लास्टिक की वो क्लिप्स इन रैंडम कलर्स, कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ एब्सोल्युटली यूजलेस, सम जिसके स्प्रिंग हैड डिसअपीयर्ड बट फैमिली स्टिल हैडन थ्रोन देम अवे, बिकॉज ऑफ कोर्स काम तो आ ही जाएगी कैसे, नोबडी नोज। एंड बेडशीट इटसेल्फ रिक्वायर्ड अ टेक्निक, हवा ज्यादा है तो एक्स्ट्रा क्लिप्स लगेंगी, बिकॉज वन स्ट्रॉन्ग गस्ट एंड सडनली बेडशीट फट फट फट फट फट फट Entire balcony becomes that sailing boat के जैसे फील आती थी। एंड क्लिप और लगाओ, ऐसे करके हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, और मतलब बच्चे तो होते थे इमरजेंसी ग्राउंड स्टाफ। एंड देन देयर वाज दिस बिगेस्ट थ्रेट, बारिश, पहली बूंद, somebody notices, and suddenly the entire family logistics operation, कपड़े, हर कोई भागते हुए जाता था, बेडशीट पुल कर रहा है, टॉवल्स ग्रैब किए जा रहे हैं, क्लिप्स उड़ रहे हैं इधर उधर, हाफ ड्राइड शर्ट जो है शोल्डर पे है, एंड ऑफकोर्स द मोमेंट यू हैव रेस्क्यूड एवरीथिंग द रेन स्टॉप्स, द सन इज कमिंग आउट, एंड या यूज टू लुक एट द स्काई पर्सनली ऑफेंड होकर की यार ये क्या मतलब था। Back goes the bamboo, back goes the rassi, back goes the bedsheet. Whole installation restarted. But there's one sensory memory I still love. Kapde finally dry, bringing them inside in this one giant pile. Ek wo, kaise samjhao? Ek wo warm and ek sun-dried si smell hoti hai na? Koi fancy fragrance ka description usme required nahi hota. It smelled like dhoop and it smelled like ghar. हम घर की याद आ गई ऐसी है। आई नो, इट्स जस्ट, इट्स स्मेल्स लाइक होम, या

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी,
1: क्यों सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी's रॉयल मिठाई एंड नमकीन। अर्ली बर्ड प्राइसेस फ्रॉम $72 प्लस ऑनवर्ड्स अंटिल 11th October। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shahimaharani.com।
3: सम इनविटेशंस आर सिंपली टू स्टाइलिश टू मिस। This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
4: It's a must be partnered event.

0: मुसल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: This movie has one of my very very liked song and वो मैं गाना बस इस बात को करने के बाद मैं चलाने वाली हूँ, बट मूवी का नाम बता देती हूँ जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। भाई ये है मस्ती 90s मिक्सटेप, मैं अंतरा आपके साथ एंड मूवी है हमारी विरासत। इमेजिन करिए आप एक न्यू कमर है, आपको बोला गया है डायरेक्टर से जाके मिलो, अगर उन्हें तुम पसंद आई तो वो स्क्रीन टेस्ट मांगे तो स्क्रीन टेस्ट होगा। नेचुरली आप मेंटली रेडी होते हो कि डायलॉग, एक्सप्रेशन, कैमरा, प्रोफाइल, ब्रिंग इट ऑन। पूजा बत्रा इन द मूवी विरासत। नाउ रिपोर्ट्स की मानी जाए एग्जैक्टली इसी एक्सपेक्टेशन के साथ प्रियदर्शन जी से मिलने गई थी इसके विरासत के सेट पर, बट प्रियदर्शन जी हैड अ रादर डिफरेंट ऑडिशन टेक्निक, उन्होंने ऑडिशन लिया ही नहीं। सो पूजा बत्रा वॉज सेइंग, एक बहुत ही पुराना इंटरव्यू मैगजीन में उन्होंने कहा था दैट दे सिंपली सैट अक्रॉस अ टेबल एंड टॉक्ड, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रही थी एंड शी नोटिसेस प्रियदर्शन जी वॉज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग हर, उसका फेस, उसके रिएक्शंस, उसके एक्सप्रेशंस व्हाइल शी वॉज स्पीकिंग एंड देन कॉन्वर्सेशन एंड्स एंड एसेंशियली ही सेज आई थिंक वील गो विथ हर, दैट्स इट, दैट्स इट। पूजा हरसेल्फ later figured that Priyadarshan had probably been gauging her through the conversation itself and I really find that fascinating because imagine coming home ki audition kaisa gaya pata nahi, audition hua hi nahi, humne sirf baat ki, but perhaps this was the audition, no camera, action, ab roke dikhao, profile dikhao. Priyadarshan ji was apparently watching what happens when Pooja is not consciously performing and what a film for that entry into हिंदी सिनेमा। आई टेल यू 1997 की विरासत, अनिल कपूर, तब्बू, अमरीश पुरी जी, पूजा बत्रा एज अनीता, प्रियदर्शन जी की डायरेक्टिंग एंड यस पायले चुनमुन चुनमुन, बट ऑफकोर्स पूजा की मेमोरीज फ्रॉम दैट फिल्म गेव अस अनदर दिस लिटिल peek inside the movie as well. Now, as a newcomer, she said that she learned enormously simply by observing Anil Kapoor and Tabu. Aur wo kehti hain ki Anil being incredibly meticulous not only about his own look and clothes, but even noticing unke co-star jo hai was wearing what. So colors jo hai won't overpower each other unke jo frames mein. And Tabu, she said sitting with her before scenes discussing how lines could be delivered so they would not waste time during the shooting. And her takeaway was very simple. Observing is one of the best ways to learn acting. And that is so very true. Aksar mujhse log poochte hai ki kaise baat kar leti ho itna? And I always say I am a very good listener. Main jab kahin par bhi jaati hoon, main bahut achha sun leti hoon. And mujhe pasand hai sunna. And that is where all of my talking comes from. Because if you are a good listener, you, yeah, kind of have a lot of content all the time. And you can talk at any point of time. Radio Masti 24/7 par. Filhal badhte hain aage yahan par bas thodi der. Aur yahan pe aapka mera saath on Masti 90s mixtape. Oh, and my favorite song, this one.

प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप। वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती 24/7। यस, मस्ती 90s मिक्सटेप चल रहा था। यस, वी आर एट दैट पॉइंट जहां पे चल रहा था। एंड जस्ट लाइक दैट, आज के इस मिक्सटेप का कैसेट ऑलमोस्ट एंड तक आ गया है। आज क्या क्या निकला इस कैसेट से? बॉटल का ढक्कन बना मेजरिंग कप, खिड़की की ग्रिल बनी हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन डेक, बेडशीट का एक इनोसेंट सा लूज थ्रेड मिला और हमने पूरी सिलाई के लिफाफे खतरे में डाल दिए, बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स के नए ने ब्रेकफास्ट से पहले इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल करवाया, बुक्स के बीच फूल दबाए गए और एक वेट बेडशीट ने पूरी रस्सी को ऐसा चैलेंज दिया कि बम्बू लाओ ऐसा करना पड़ा। बट आज सिनेमा की मेमोरीज भी कुछ काफी कमाल की थी, बॉम्बे से लेकर देन कौन में मनोज वाजपेयी टू खामोशी द म्यूजिकल एंड देन विरासत। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई लव ओपनिंग द 90s विद यू, बिकॉज जितना लगता है ना कि अरे ये सब तो याद कर लिया होगा, उतना ही कोई नया ड्रॉर जो है वो खुल जाता है। एक तरफ वो मेमोरीज जो हम सबके घर में ऑलमोस्ट सेम स्क्रिप्ट के साथ चल रही होती, धागा मत खींचना, फ्रिज को बंद करो, कपड़े उतारो, बारिश आ रही है। एंड ऑन द अदर साइड वो फिल्म्स जो हमने काउंटलेस टाइम्स देखी, बट डेकेड्स लेटर यू डिस्कवर वन टाइनी बिहाइंड द सीन स्टोरी एंड सडनली अच्छा तो ये ऐसा हुआ था। मे बी दैट्स द फन ऑफ लुकिंग बैक, यू डोंट नेसेसरीली डिस्कवर अ डिफरेंट पास्ट, समटाइम्स यू सिंपली डिस्कवर मोर ऑफ इट। और फिर एक प्रेस्ड फ्लावर किसी पुरानी किताब से गिरता है, कोई स्मेल, कोई साउंड, कोई गाना रैंडमली मिल जाता है एंड विदाउट परमिशन, विदाउट वार्निंग, यू आर देयर उसी घर में, उसी गली में, उसी एज में फॉर जस्ट अ फ्यू सेकंड्स। मैं आपकी 90s वाली आंसरा, यस दिस वाज अनदर राइड ऑन मस्ती 90s मिक्सटेप। कैसेट खत्म हुई है दोस्त, कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ट्रस्ट मी 90s के ड्रॉअर में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी हैं जिन्हें देखकर हम कहेंगे कि ओ गॉड ये मैं कैसे भूल गई। सो अंटिल वी ओपन दैट ड्रॉअर अगेन, कीप द म्यूजिक प्लेइंग, कीप दोस मेमोरीज रियली क्लोज टू योर हार्ट एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो मस्ती 24/7। अंतरा इज साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे
2: गरम कड़ाही भुनता हुआ बेसन वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी
1: क्यों सोचते ही आया ना याद तो दिवाली वाला शाही स्वाद
3: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड प्रेशर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस शाही महारानी रॉयल मिठाई एंड नमकीन अर्ली बर्ड प्राइसेस फ्रॉम $72 प्लस ऑनवर्ड्स अंटिल 11th अक्टूबर फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shahimaharani.com
4: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
5: It's a Masti Partner event.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: All music is loud. Some songs just sneak in. Makes you smile. Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
1: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
2: हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत
3: ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़।
4: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
5: मेरे करण अर्जुन आएंगे
6: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे,
7: पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे।
8: मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: आना चाहिए। आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
1: ऑल इज वेल।
0: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out.
4: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: आएंगे
1: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे। इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition, celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standia, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo. Entry is free. Free. Free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
2: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी।
1: क्यों? सोचते ही आया ना याद, वो दिवाली वाला शाही स्वाद। इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानीज रॉयल मिठाई एंड नमकीन। अर्ली बर्ड प्राइसेस फ्रॉम $72 प्लस ऑनवर्ड्स अंटिल 11th अक्टूबर। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shahimaharani.com।
3: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा है सीजन।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है
2: तुमको ले कर
1: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है
3: मुझे चांद पे ले चलो
1: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
3: रात अकेले जोश में रहो
4: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
5: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है टेंशन नहीं लेने का टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा जहां न्यूज है फिल्मी गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7
6: मेरे करण अर्जुन आएंगे
0: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजे आएंगे पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: आएंगे
1: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।
2: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी,
1: क्यों सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद। इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानीज रॉयल मिठाई एंड नमकीन। अर्ली बर्ड प्राइसेस फ्रॉम $72 प्लस ऑनवर्ड्स अंटिल 11th अक्टूबर। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shahimaharani.com।
3: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
0: Time to raise the bar. Ramba. Mosti Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week. Full on Renuka style. Renuka.
1: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yes, Musti Top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters.
1: और आपको जोश में रखने के लिए कौन आता है थर्सडेज को? वेल, मुझे पता है कि बहुत से लोग मुझे ये बोलते हैं, तुम कहती हो कि तुम आती हो, पर आती हो नहीं तुम रेगुलरली. भाई क्या करें, आजकल तो एआई ने भी सोल्यूशन ढूंढ ही लिया है क्लोन्स बनाने का. तो अब मुझे लगता है कि मेरे 8-10 क्लोन तो बन जाने चाहिए. अब क्या करें ना भाई.
0: Musti Top 20 Bollywood Chartbusters of the Week, full on Renuka style.

0: टीम में सारी गॉसिप, फुल टू गॉसिप ऑफ बॉलीवुड और साथ ही साथ में गाने ऊपर गाने नीचे, कौन सा होने वाला है गाना नंबर आज एक, ये आपको मुझे बताना है। फिलहाल नहीं, फिलहाल तो आप समझो कि गाने चल कौन से रहे हैं। अटका हुआ है ये फिलहाल गाना नंबर 20 पर ही, इट्स कॉल्ड ऐसी मेरी वाइब। तो वाइब तो है ही हमारी बहुत ही खास, रेडियो मस्ती 24/7 पर सुनते हैं गाना विच इज ऑन नंबर 20 एंड ऑफ कोर्स राइट आफ्टर नंबर 20 क्या होने वाला है 19, नथिंग, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग दैट वन। लेकिन कौन सा गाना होगा नंबर 19 पर, वेल अ लॉट ऑफ पॉइंट्स फॉर गेसिंग दैट फॉर श्योर। गुड इवनिंग एवरीवन, 5:03 और रेडियो मस्ती 24/7 के स्टूडियो से मैं रेणुका आपके साथ रहूंगी पूरे पूरे 8 बजे तक, आप रहेंगे ना मेरे साथ।
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 20।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो। बॉलीवुड फ्लैशबैक।

0: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
1: It's a Masti Partnered event.
2: जब मस्ती पार्टनर इवेंट होता है कुछ तो डेफिनेटली आपके टाइम के लिए तो वर्थ होता ही है. अ वेरी गुड इवनिंग, 5:13 यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर आप है रेनुका के साथ.
0: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग. जॉइन अस ऑन मस्ती.
2: जॉइन तो आपने कर ही लिया है, तो बस अब आपको एक काम करना है कि सिंगापुर टाइम 8 बजे तक मेरे साथ रहना है. प्रोमिस या प्रोमिस. तो भाई चलते हैं आगे. हनुमान अंश की बात करते हैं. 425 करोड़ 62 डेज एट द बॉक्स ऑफिस एंड अर्निंग 425 करोड़ रुपीज. वेल, हनुमान अंश एक फिल्म से कहीं ज्यादा है. इट इज अ मोमेंट इन इंडिया सिनेमैटिक हिस्ट्री. जैसे कि जय संतोषी माँ दैट वंस गेव कंपटीशन टू शोले बैक इन द डे. पता है आपको ये वाली कहानी? नहीं पता थी ना. देखो, जब मेरे शो पर आते हो तो बड़ा कुछ सीखते हो. और डिवोशनल फिल्म जी हनुमान अंश है विच इज बेस्ड ऑन नीम करोली बाबा की जिंदगी. वेल, एक बजट 2 करोड़ से कम पे बनी थी ये फिल्म और 8वें ही दिन इसको फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया गया था. आप जानते हैं ये बात, क्योंकि भाई जब 300 से 30 स्क्रीन्स पर रह गई फिल्म तो ऑब्वियस है कि उसको फ्लॉप ही बोलेंगे. लेकिन तब इन्होंने ये सोचा, बात कर रही हूँ मैं अनुप्रिया नागर की, उन्होंने ये सोचा कि भाई अगर डिवोटीज हनुमान जी के हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो बाकी के ऑडियंस कैसे करेंगे. एंड देन वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, वेल वो ही एक तरीका था लोगों तक पहुंचने का. और वाकई वो वर्ड ऑफ माउथ ऐसा गया कि वो बढ़ता ही चला गया. और आज के दिन में 62 दिन देख चुकी है ये फिल्म और फिर भी बड़ी बड़ी फिल्मों के आगे झुकने को तैयार नहीं है. सो वेल, सुनते हैं इसका अगला गाना विच इज एक्चुअली ऑन नंबर 19.
3: मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में.
2: मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते कि ये आवाज ही कुछ अलग है. इट्स एक्चुअली अ फोक सिंगर एंड इस फोक सिंगर को आफ्टर ऑल दिस अर्निंग सोच दिया है हनुमान अंश की टीम ने कि वो इनकी आंखें ठीक कराएंगे. आई विल ट्राई टू टेल यू मोर अबाउट द सिंगर एज वी प्रोसीड हमारे शो पर. फिलहाल के लिए अगला गाना विच इज नंबर 19 कमिंग अप right for you on Radio Masti 24/7 with Renuka. This is Masti Top Charts.
4: Trending song number 19.

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी,
1: क्यों सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी's रॉयल मिठाई एंड नमकीन। अर्ली बर्ड प्राइसेस फ्रॉम $72 प्लस ऑनवर्ड्स अंटिल 11th October। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shahimaharani.com।
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 18।

0: It's a little bit of a different rendition of the gana Pia Ghar Aaya. Thoda sa alag hatke hai, but it's actually, I can't make up my mind whether acha hai ya nahi acha hai. Radio Masti 24/7 par chal raha hai, Masti Top Charts.
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
0: Masti Top 20 pe is samay hum baat karna chahenge about the final rites of veteran actor Nana Patekar, jo ki hoga aaj hi ke sham ko at his farmhouse in Donje Village, Pune District, full state honours ke saath mein from the Maharashtra government. Ji hain, ye khabar is samay aa rahi hai, unke mortal remains jo hain, they are scheduled to arrive from Goa in Pune for fans to pay their final respects. Aur state honours ke saath mein, which is granted by the Maharashtra government in recognition of his decades long contribution to Marathi theatre, Marathi cinema aur Hindi films. Jaisa ki hum jante hain, aaj subah ye khabar charo taraf phail gayi ki Nana Patekar jo hain, he passed away at the age of 75 after suffering a cardiac arrest at his residence in Dona Paula, Goa. Aur usi ke baad, of course, bahut sare messages har taraf से पहुंच रहे हैं कि किस तरह इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में ऐसे रोल्स निभाए हैं विच आर एब्सोल्युटली अनफॉरगेटेबल. एक कार्डियक अरेस्ट के बाद में वो अपने घर पर अनकॉन्शियस पाए गए एंड ही वाज टेकन टू मणिपाल हॉस्पिटल, जहां पर डॉक्टर्स ने अटेम्प्ट किया टू रिवाइव हिम विद CPR फॉर अराउंड 45 मिनट्स. सुबह 5:20 इंडिया टाइम पर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर शेखर सालकर ऑफ मणिपाल हॉस्पिटल, उनको डिक्लेयर किया गया डेड. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है कि उनका स्टेट ऑनर्स से फ्यूनरल होगा और जैसा कि मैंने कहा, आज शाम को इंडिया टाइम 5:00 गोवा से लेके पुणे तक उनकी बॉडी को लेकर जाया जाएगा फॉर देयर फैंस टू पे दी होमेज. और अगर बात करें नाना पाटेकर के करियर के बारे में, तो उन्होंने शुरुआत करी थी अपने एक्टिंग करियर की विद 1978 फिल्म गमन, और उसके बाद ही वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द प्रोमिनेंट performers in both Marathi and Hindi cinema. Parinda, Prahar, Angar, Krantiveer, Tiranga, Khamoshi aur Ab Tak 56, is tarah ki filmon mein humne unko dekha hai aur definitely unke role ko hum kabhi bhi bhul nahi payenge. Radio Masti 24/7 par hamari taraf se aur hamare sabhi sunne walon ki taraf se Nana Patekar ji ko salaam.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है. On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते. हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती. बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से.
2: इट्स टाइम फॉर
3: मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर.

और आप सुन रहे हैं समय, आप सुन रहे हैं समय फिल्म परिंदा के साउंडट्रैक से वाला गाना इट इज तुमसे मिलके, आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाज. जी हाँ, इन द मेमोरी ऑफ नाना पाटेकर हु क्रिएटेड सच अ ह्यूज इम्पैक्ट विद हिज एक्टिंग इन दिस फिल्म. मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. एंड विद दैट अ ट्रिब्यूट फ्रॉम टीम मस्ती एंड मस्ती फैमिली टू नाना पाटेकर.

0: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: भाई बात तो होती है, दिस टाइम ऑफ द ईयर में जब ये पूरे के पूरे गरबा और डांडिया नवरात्रि के जब शुरू हो जाते हैं ना फंक्शंस, आई टेल यू इट गिव्स यू सच एन अमेजिंग फील, राइट? अ वेरी गुड इवनिंग. जी हाँ, यहाँ पर रेणुका आपके साथ है और चल रहा है हमारा आपका फेवरेट वाला शो, तो नहीं कह सकती हूँ, ये जरूर कह सकती हूँ, लड़ाइयों वाला शो मस्ती टॉप चार्ट्स. मस्ती टॉप चार्ट्स में धीरे धीरे टुनकते हुए जब मेरे लिसनर्स यहाँ पर आते हैं और मेरे को बोलते हैं, अरे वाह हम तो भूल ही गए कि आज आपका शो है. हाँ आप भूल सकते हैं, जिस दिन मैं भूल गई उस दिन मेरी क्लास तो जरूर लगाएंगे आप, है ना? वेलकम है जी सपना जी. अच्छा तो अगला जो हमारा गाना है यहाँ पर, विच इज ऑन नंबर 17, इट इज फ्रॉम द मैग्नम ओपस. जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं रामायणा की, जो कि बस दो पार्ट्स में हम हमेशा से बात करते चले आए हैं कि भाई क्या फिल्म है. 4,000 करोड़ का बजट, आप सोच सकते हैं जहां पर हनुमान अंश 2 करोड़ के बजट में बनी है, वहीं पर 4,000 करोड़ का ये बजट लेकर रामायणा. और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अरुण गोविल, जिनको हम हमेशा याद करते हैं आइकॉनिक टेलीविजन अडेप्टेशन ऑफ रामायणा से, और उसमें वो राम जब बने थे तो सभी ने उनको सच में लॉर्ड राम की जगह दे दी थी, और कहीं बाहर मिलते थे किसी एयरपोर्ट पे किसी जगह पर तो लोग उनके पैर करते थे और आशीर्वाद मांगते थे. आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पैक्टफुल रहा होगा उनका वो कैरेक्टर रोल. लेकिन उन्हीं को हाल ही में, कल ही के दिन में जब पोस्टर रिवील किया गया तो उनको दिखाया गया एज किंग दशरथ नितेश तिवारी की ये इस फिल्म में, जिसका नाम है रामायणा. वेल अब आप सोच सकते हैं कि सोलो पोस्टर्स धीरे धीरे रिवील हो रहे हैं और पता लग रहा है कि भाई कौन क्या बन रहा है. किंग दशरथ, द फादर ऑफ लॉर्ड रामा, द रूलर ऑफ अयोध्या, ऐसा लग रहा है कि लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल विद अरुण गोविल इन दिस रोल. बहुत ही सोच समझ के, मैं तो कहूंगी कास्टिंग करा हुआ ये इस रोल के लिए. ही वंस एब्सोल्युटली ब्रॉट राम टू लाइफ फॉर अ जनरेशन एंड नाउ ही रिटर्न्स टू द वर्ल्ड ऑफ रामायणा एज द किंग ऑफ अयोध्या, अरुण गोविल एज किंग दशरथ. इनके अलावा ऑफकोर्स दिख रहे हैं रामायणा में हमको रणबीर कपूर एज लॉर्ड रामा एंड साई पल्लवी एज सीता. यश प्ले कर रहे हैं रावण का रोल और सनी देओल को कास्ट किया गया है हनुमान. अब पता नहीं, दैट्स वन रोल विच आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ कैसे लग रहे होंगे सनी देओल इस रोल में, बट वेल वी शैल सर्टनली वॉच दिस फिल्म. फिलहाल के लिए अगला गाना ऑन नंबर 17. जी बिल्कुल, रामायणा के साउंड ट्रैक से सुनेंगे हम लोग ये साथ साथ. इट इज गाना नंबर 17.

और रामायण के साउंडट्रैक से आप सुन रहे हैं इस समय जय जय राम, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज. दिस इज गाना नंबर 17 ऑन मस्ती टॉप चार्ट्स. द कंपोजर इज एआर रहमान, लिरिसिस्ट इज डॉक्टर कुमार विश्वास, एंड दिस इज रामायण पार्ट 1.

0: यार ये गाने मुझे अगर जिस दिन समझ आ जाएंगे ना उस दिन बात ही क्या होगी। मैंने आज बोला कि यार ये गाना टॉप चार्ट्स में नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरी पूरी टीम हाथ धो के, लिटरली हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई कि ऐसे कैसे गाने खत्म कर देते हो आप, ये गाना इतना पॉपुलर है। भाई आप में से कितने लोग मानते हो कि ये गाना वाकई इस लायक है कि इसको टॉप चार्ट्स में आना चाहिए? टेल मी ऑनेस्टली।
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, they are spicy and they are happening. Join us on Masti,
0: fresh and hot and spicy and happening. Shayad main hi piche reh gayi hai na, Radio Masti 24/7 par. Apna agla gana kaun sa hai वो भी बता देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को ये गाना ना याद दिलाता है खलनायक टाइप का, मतलब इट सीम्स लाइक अ वेरी विलन टाइप का गाना, कासा कासा कासा। और खलनायक से ऑब्वियसली हमें याद आते हैं संजय दत्त। और संजय दत्त की खास मैं खबर पढ़ रही थी हाल ही में कि उनकी जो करंट पत्नी है, जी हाँ, जिनका नाम है मान्यता, वो उनसे 20 साल बड़े हैं। ऑलराइट, सो संजय दत्त वन ऑफ दोज एक्टर्स जिनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी सिग्निफिकेंटली बिगर हेडलाइंस बनाती है अपने प्रोफेशनल लाइफ से, क्योंकि वो तो थी नहीं ना आफ्टर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम फ्रॉम हिज अरेस्ट एंड सब्सिक्वेंट जेलिंग इन कनेक्शन विद द 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग्स केस। और मल्टीपल शादियाँ और ड्रग एडिक्शन की वजह से ऑफकोर्स कॉन्ट्रोवर्सीज तो आस पास रहती ही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू चल रहा था, संजय दत्त ने ओपन अप किया अबाउट हिज फैमिली लाइफ, पर्टिकुलरली अपना त्रिशला के साथ जो उनकी डॉटर है, फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज टू लेट एक्टर ऋचा शर्मा। और साथ ही में ये भी बताया कि अपनी तीसरी और करंट बीवी जो कि एंटरप्रेन्योर है, फॉर्मर एक्टर है मान्यता दत्त, उनसे वो कैसे कैसे और कहां मिले। वेल त्रिशला इस समय 38 इयर्स ओल्ड है, शी लिव्स इन न्यूयॉर्क एंड शी इज अ बिग लेडी एंड डज अ लॉट ऑफ गुड वर्क देयर, ऐसा कहा हमारे संजय दत्त डैडी ने। और साथ ही साथ में ही सेड दैट वर्किंग विद ऋचा शर्मा, आप सोचिए एक बहुत ही पुरानी बात हो गई है, दैट शी वॉज डेटिंग संजय दत्त एंड हमेशा सेट से मिसिंग रहती थी, शी वॉज ऑलवेज ऑन द फोन विद संजय दत्त एंड शी वॉज अ लवली लेडी, ऐसा कहना है सभी का इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री। और साथ ही साथ में इस समय त्रिशला के साथ काफ़ी बढ़िया बॉन्ड शेयर करते हैं डैडी संजय दत्त, एंड ऑफकोर्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर बीच में हो गए थे, बहुत सारे रीजन्स थे इंक्लूडिंग जो इनका केस चल रहा था, एंड दे डिडंट वॉन्ट कि त्रिशला का जो पोजिशन है वो इनको मिले बिकॉज ऑफ ऑल द केसेस, एंड उसी के बाद बहुत से चेंजेस आए एंड ही सेज दैट ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हर। लेकिन सबसे बड़ी बात है उनकी लव स्टोरी विद हिज नाउ वाइफ मान्यता, एंड कहते हैं कि मैंने मान्यता को देखा था पहली बार जब वो प्रेम में थी, क्योंकि मैं उससे 20 साल बड़ा हूँ, वी मेट एंड वी इवेंचुअली कोर्टेड, एंड मैंने कभी नहीं देखी ऐसी कोई औरत हु इज़ सो कमिटेड डेडिकेटेड एज अ मदर एंड अ वाइफ, एंड मेरी माँ नरगिस शी इज़ दी ओनली वन आई हैव सीन जो हमेशा रॉक की तरह खड़ी रही हैं, चाहे जेल हो चाहे कुछ और हो। क्या बात है, रेडियो मसी 24/7 पर। बढ़ते हैं आगे और मैं आपको मिलूंगी इस बढ़िया से गाने के उस पार, ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्दी। लेकिन फिलहाल के लिए दिवाली की मिठाइयां ली या नहीं ली आपने? हो, प्लानिंग तक नहीं करी।
2: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी,
3: क्यों सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
4: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ, रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर, नमकीन जार्स टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस, शाही महारानी रॉयल मिठाई एंड नमकीन। Early bird prices from $72 plus onwards until 11th October. For more details, call 6235-8840 or log on to shahimaharani.com.

0: जब किशोर कुमार की आवाज आए तो फिर वेल प्यार बरसाए या जो भी हो, मैं तो कहती हूँ कि और कुछ नजर ही ना आए. राइट ऑन रेडियो मस्ती 24/7, इट्स अबाउट 5:53 बाय द स्टूडियो क्लॉक एंड दिस इज रेनुका विद यू. जी हाँ, चल रहा है मस्ती टॉप चार्ट्स और मस्ती टॉप चार्ट्स के साथ साथ चल रही है मेरी गप्पे ऑन द साइड विद अ लॉट ऑफ यू. इन केस यू मिसिंग आउट ऑन मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बातें क्या चल रही है, देन व्हाई डोंट यू टेक्स्ट मी 9151896 3. जी हाँ बिल्कुल, यही नंबर है, अब तक याद नहीं हुआ आपको.
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल.

0: भाई ऐसा लगता है कि आजकल मसी टॉप चार्ट्स का जो पहला घंटा होता है ना 5 बजे से 6 बजे तक का, दैट साउंड्स प्रीटी मच लाइक अ डिवोशनल आवर. क्योंकि क्या करें ना, जो मस्ती टॉप चार्ट्स के गाने हैं 20 से लेके 15 तक, दे आर एब्सोल्युटली डिवोशनल. क्योंकि दो ही ऐसी फिल्में हैं जो पहुंची हुई हैं इस घंटे में मेनली, एंड दैट इज हनुमान अंश एंड रामायणा. जी हाँ बिल्कुल, आने वाला है गाना नंबर 15 हनुमान अंश का, ये गाना विच इज एक्चुअली हिटिंग द कॉर्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल. जी बिल्कुल, इसका नाम है पार्वती एंड पीपल आर जस्ट लविंग इट. मतलब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसको ऐसे टाइम पर सुने जब आप बड़े डिवोशनल टाइप के हो रहे हैं. यू कैन लिसन टू इट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, राइट, एंड यू विल एंजॉय इट. इट्स गॉट दैट वाइब, इट्स गॉट दैट फीलिंग, इट्स गॉट दैट इमोशन. एंड उस इमोशन के साथ साथ में है हमारा और भी बहुत सारी बातें करने का मोशन, विच विल कंटिन्यू in the next hour, guys. This is Renuka with you, and of course this is Masti Top Charts. Masti Top Charts pe agla gana is gana number 15 from Hanuman Ansh. Ji hai, is ghante do gane Hanuman Ansh, do gane Ramayana, aur aisa lagta hai ki pura ghanta jaisa ki bane ka has turned out to be devotional. Sunte hai gana Radio Masti 24/7 par, gana number 15.
1: Trending song number 15.

0: भोले बम भोले, भोले बम भोले।
1: और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
2: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
3: जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर आप पहुंची हूँ और रेडियो मसी 24/7 पर आपके साथ हूँ शाम के 5 बजे से। वेल, गिव मी अ क्विक शाउट आउट गाइस इन केस यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ 9151896 3। और हम साथ साथ में सुन रहे हैं मसी टॉप चार्ट्स। तो बताओ कौन सा गाना होने वाला आज के दिन में नंबर एक पर। नहीं पता, चलो कोई नहीं, मैं बताऊंगी ही बाद में।
2: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, they are spicy and they are happening.
3: Join fresh hot spicy ke beech mein agla gana jo hamara aane wala hai, that is the title track, ye prem mohliya. मुझे लगता है श्रेया घोषाल के अलावा आजकल कोई है ही नहीं सिंगर जो कि इस तरह के गाने चला पाए, गा पाए और हम तक पहुंचा पाए। What do you think guys? Well, the title track is composed by Himesh Reshammiya, lyrics jo hai Kumar ke hain aur isko gaya hai obviously Shreya Ghoshal ne, and apart from that

0: कुछ नहीं होगा, थैंक गॉड फॉर दैट. आ रहे हैं आयुष्मान खुराना. यस, ही इज टेकिंग ऑन द रोल गाइज. आई डोंट नो इफ आई टोल्ड यू दैट लास्ट टाइम और नॉट, लेकिन फिलहाल के लिए सूरज बड़जात्या का ये आइकॉनिक कैरेक्टर, इस तक पहुंचना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है. एंड ऑफ कोर्स इनकी कहानी में हमेशा बड़ा ही ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली का वॉर्म्थ होता है, वो तो आएगा ही वापस, चाहे आजकल सिर्फ सुनने में ही आता है जॉइंट फैमिली, सोचने में ही आता है, करने में ज़रा कम ही आता है. बट दिस स्टोरी ब्लेंड्स अ मॉडर्न रोमांस विद ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली वॉर्म्थ, फॉलोइंग अ रिलेशनशिप दैट स्टार्ट्स एज अ फ्रेंडशिप बिफोर फेसिंग डीप इमोशनल टेस्ट. मुझे लगता है मैंने प्यार किया ही मैं बात कर रही हूँ, बट सूरज बड़जात्या बींग सूरज बड़जात्या यार, ही हैज़ नॉट गॉट आउट from that zone. Well, लगता है 90s का जोन वहां भी चलता रहेगा रेडियो मसी 24/7 पर. क्या लगता है सूरज बड़जात्या की फिल्म आज की जिंदगी में चलेगी नहीं चलेगी? What do you think? Will you watch it? Good evening.
1: Trending song number 14.

0: कहते हैं ना कभी कभी कि मैरिज इज अ मेड इन हेवन एंड कपल्स जो होते हैं ना वो एकदम एक सा सोचने लग जाते हैं. वेल आफ्टर लिसनिंग टू दिस गाना आई मस्ट टेल यू गाइस, एक तरफ सपना जी और एक तरफ रमेश जी दोनों मुझे इंडिपेंडेंटली मैसेज लिख रहे हैं कि क्या गाना है. मतलब दोनों की पसंद एक सी. अब कहते तो ये भी हैं कि बहुत साल शादी के बाद और साथ में रहने के बाद भाई बहन जैसी शक्ल भी हो जाती है, तो आई विल नेक्स्ट टाइम चेक आउट कि आपकी शक्लें भी मिलने लगी हैं क्या. और आपने जो पूछा है, वेल द मूवी रिलीजेज ऑन नवंबर 27, 2026. इसमें देखने को मिलेंगे आयुष्मान खुराना, साथ में शर्वरी वाग, अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक, सीमा पावा, सौम्या टंडन, शाद रंधावा एंड स्वानंद किरकिरे. और म्यूजिक जैसा कि अभी हमने बात करी हिमेश रेशमिया की. वेल इट्स ऑल अबाउट प्रेम, आयुष्मान खुराना और एक औरत जो है शर्वरी, दे नेविगेट अ बॉन्ड बिल्ट ऑन फ्रेंडशिप. बिल्कुल मैंने प्यार किया टाइप की स्टोरी लग रही है इस टाइम पर. बट यू नो समटाइम्स ऑल वी वॉन्ट इज अ सिंपल लाइफ, है ना, कॉम्प्लिकेशंस आउट, सिर्फ और सिर्फ सिंपल लाइफ. और शायद वही सिंपल लाइफ की तरफ बार बार हमें सूरज बड़जात्या लेके जाते हैं अपनी फिल्मों के साथ में. रेडियो मस्ती 24/7 पर वेलकम बैक. जी हाँ, एंड दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स रेणुका के साथ.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर. चेक इट आउट.
0: सम इनविटेशंस आर सिंपली टू स्टाइलिश टू मिस. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
2: It's a Musti partnered event.
1: Trending song, number 13.

0: 4.
1: Musty Song of the Hour. Song of the Hour.
2: तुमने वो क्या देखा

कभी कभी मेरा मन करता है कि एक खास दोस्त यहाँ पर आ जाए और हम उसी की पसंद का गाना चला देते हैं, और फिर जब वो गाना चलाते हैं और वो आ जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना, जी हाँ, यहाँ पर सफल हुई। हेलो हेलो डैंग साहब, कैसे हैं? सो लवली टू सी यू एंटर एट द राइट टाइम। आपको अपनी एंट्री पसंद आई या नहीं आई ये बताना जरूर। सत्य पर सत्ता, एब्सोल्युटली किशोर कुमार ऑन द वोकल्स।

0: What a song and what a song. Hello, good evening. 6:20 यहाँ पर Radio Mercy 24/7 पर Renuka with you.
1: They are fresh. They are hot. They are spicy.
0: जी हाँ, बात हो रही है मेरे अलावा इन गानों की भी, hot, spicy and fresh. Radio Mercy 24/7 पर चल रहा है Mercy Top Charts. Mercy Top Charts पर इस समय. Before we move on to गान नंबर 12, which is भाई तेरा स्टार है. जी हाँ, इसको आंखों से तूने 2.0 कॉपी करने शुरू कर दिए गाने सारे के सारे और फिर उनको टॉप चार्ट पे पहुंचा दिया. यही है आजकल का मकसद. लेकिन वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट राइट नाउ एंड शेयर विद यू इज समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट नाना पाटेकर जी. जी हाँ, जो आज के बाद हमारे साथ नहीं है बिल्कुल, लेकिन फिर भी उनकी जब भी हमें याद आएगी, उनके डायलॉग डिलीवरी, उनके बहुत ही इम्पैक्टफुल रोल, तो हम कुछ कुछ बातें तो ज़रूर सोचेंगे. लेकिन वन थिंग दैट आई ऑल्सो लर्न अबाउट हिम टूडे इसकी, ना ही सिर्फ फैंस ने लूज किया है अपना फेवरेट एक्टर, लेकिन फॉर लैक्स ऑफ पीपल, राइट, फॉर लैक्स ऑफ पीपल दे लॉस समथिंग मोर विच इज़ अ रे ऑफ होप. आप सोचेंगे ऐसा क्या था? वेल, नाना पाटेकर जी, ही वॉजन्ट जस्ट एन एक्सेप्शनल एक्टर, ही हैड ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ होप फॉर थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स और उनकी फैमिलीज के लिए. आप जानते हैं पिछले 10 साल से थ्रू द नाम फाउंडेशन नाना पाटेकर ने हेल्प किए 77 लाख फार्मर्स, 51,000 डिजास्टर रिलीफ फैमिलीज एंड ही वॉज सपोर्टिंग nearly 5,000 widows through its widow welfare program. सारी ये कहानी उस समय शुरू हुई जब मराठवाड़ा, जो महाराष्ट्र में है, it suffered devastating crop losses and farmer deaths, and this was in 2015. तो उस टाइम क्या हुआ, महाराष्ट्र ने रिकॉर्ड किए 3,228 farmer suicides उस साल में, with मराठवाड़ा alone which had accounted for 1130. उस समय नाना जो है ना, he was preparing to buy a luxury car. एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने टेलीविजन पे कुछ देखा एंड दैट चेंज द पर्पस ऑफ हिज लाइफ. होता ना, कभी कभी हम कुछ कर रहे होते हैं और सडनली कोई चीज सामने आ जाती है और हमें लगता है नहीं यार, हम कितनी मतलब छोटी बात कर रहे हैं जिंदगी में, लेकिन देखो देयर इज सो मच मोर इन लाइफ, राइट. सो उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए, जी हाँ, सेव किए थे विद द इंटेंशन ऑफ बाइंग अ न्यू कार. और उस शाम जब वो अपनी ड्रिंक पी रहे थे और टीवी देख रहे थे, दे वर प्लेइंग एन इंटरव्यू विद द फैमिली मेंबर्स ऑफ अ फार्मर जिसकी मौत हुई थी सुसाइड से. मोर देन द मोर्निंग फॉर द डेड, ही सेड, मुझे लग रहा था कि यार इनके पास खाने को कुछ नहीं है, ये सब दिख रहा है इनकी शक्ल पे. और उस उन इमेजेस को, उन प्लान्स को अनसेटल बिल्कुल कर दिया नाना के दिल को उन चीज़ों ने. एंड ही वॉज लिविंग अ वास्टली डिफरेंट, मोर प्रिविलेज लाइफ उस टाइम पर. सडनली वो जो लग्जरी कार की बात थी ना, वो बड़ी मीनिंगलेस सी लगने लगी. तो उन्होंने कहा कि मैं डोनेट कर रहा हूँ 15,000 ईच टू 1,000 फार्मर्स, मतलब पूरे के पूरे 1.5 करोड़ जो उन्होंने इकट्ठे सेव करे थे, उन्होंने कहा मैं सब डोनेट कर रहा हूँ. लेकिन तब बात हुई कि सिर्फ 1,000 लोगों को हेल्प करने से क्या होगा. बात तो ये होती है कि इस तरह से एक ट्रस्ट बनाया जाए और उसके बाद में जितने लोगों को आप कर सकें पैसे इकट्ठा करके सेवा करें उनकी. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट ही डिड. हिज 1.5 करोड़ बिकेम 60 करोड़ विद द मूवमेंट. और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, नाम फाउंडेशन, जो कि आज के दिन में 77 लाख फार्मर्स, 51,000 डिजास्टर रिलीफ फैमिलीज एंड 5,000 विडोज को सपोर्ट कर चुका है. कुछ बातें होती है ना इंसान की, सिर्फ उनके जाने के बाद में बात करी जाती है. पहले पता हो तो आप उस इंसान को अलग ही समझे और अलग ही ट्रीट करें, राइट. व्हाट डू यू थिंक? अ वेरी गुड इवनिंग. 6:24 रेडियो मस्ती 24/7 पर गाना नंबर 12.
2: ट्रेंडिंग सॉन्ग

0: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: बाय द वे, अगर आपने फिलहाल के लिए टिकटें नहीं खरीदी हैं एसजीएस की, तो फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि अब जरा थोड़ी मुश्किल है आपको मिलनी है। ओहो, कैसे आप नहीं अटेंड कर सकते सिंगापुर गुजराती सोसाइटी का दी ओरिजिनल नवरात्रि डांडिया। ओए होए, अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया बॉस। सिंगापुर में तो रहते हुए नवरात्रि के सीजन में ये बहुत जरूरी है, पक्का।
2: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, they are spicy and they are happening. Join us on Masti Top 20.
1: में of course इस समय मैं एक दूसरी बात भी करना चाहूंगी। आप जानते हैं कि हमारा एक खास पॉडकास्ट जो कि आज लॉन्च हो रहा है, एंड दैट इज बिहाइंड द सक्सेस विद रेणुका। जी हाँ, एक बहुत ही, मैं तो ये कहूंगी कि दिस इज अ टॉपिक एंड दिस इज अ सब्जेक्ट एंड दिस इज अ पॉडकास्ट विच इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटीज और इन सब लोगों की बातें तो बहुत लोग करते हैं, इनके स्ट्रगल्स की और क्या क्या, लेकिन एक डेली लाइफ में भी स्ट्रगल्स होते हैं और उसके बियॉन्ड भी एक जिंदगी होती है जो कि हम लोग कई बार उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो हमारे आसपास के जो हीरोज हैं, फोकस मेनली ऑन एंटरप्रेन्योर्स, ये वाली स्टोरीज आपको बहुत इंस्पायर करेंगी, बहुत ज्यादा ये बताएंगी कि ये जो सारा ग्लैमर और ग्लिट्स और पैसा और सक्सेस आप देखते हैं ना, इसके पीछे हर एक इंसान ने कभी कभी एक ऐसी ज़िंदगी बताई है जो कि वाकई हैज़ बीन नॉट ईजी। तो बस ऐसी ही कहानी आज हमारा लॉन्च एपिसोड है मस्ती AVI पर, आप देख सकेंगे 7:00 से। इट्स कॉल्ड बिहाइंड द सक्सेस विद रेणुका। और आज के दिन में जो हमारे गेस्ट हैं, वेल आई कैन टेल यू, जब नौकरी छूट जाती है और साथ ही में एक बिजनेस आपके सामने आता है और आपको लगता है कि अगर ये बिजनेस मैंने नहीं लिया तो मुझे देश छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने बिजनेस लिया तो दैट केम विद द डेट ऑफ $2 million। कौन खरीदता है ऐसा बिजनेस, कौन ऐसा बिजनेस टेक ओवर करता है जिसमें ऑलरेडी 2 million का डेट है? कोई नहीं करता ना। लेकिन इन्होंने ये किया, और जब ये किया उसके बाद उसको किस तरह से टर्न अराउंड किया, किस तरह के चैलेंजेस आए, और आज के दिन में वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, नौकरी में वापस जाएंगे नहीं जाएंगे, इन सब के बारे में ऑफकोर्स आप देख सकते हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट यू गोइंग टू बी वॉचिंग एट 7 PM ऑन मस्ती AVI। जी, हमारे यूट्यूब पर, हमारे ऐप पे मस्ती AVI बटन पे, या फिर हमारे फेसबुक पेज पर, हर जगह दिखेगा आपको ये। एंड दिस इज द पॉडकास्ट वेयर योर्स फेथफुली, दैट इज माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग टू डॉक्टर शरद गोविल। गाना नंबर 11 कमिंग अप नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7। दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 11।

0: गाना काफी बोरिंग लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट द लिरिक्स आर वेरी ब्यूटिफुल. इट इज ओरिजिनल वर्सेस न्यू. जी हाँ, आइकॉनिक 2007 की कल्ट क्लासिक जो थी आवारापन, इट वाज ओरिजिनली संग बाय मुस्तफा जाहिद एंड कंपोज किया था प्रीतम ने. 2006 से लेकर 2026 तक का जो सीक्वल है, इट फीचर्स मल्टीपल न्यू एंड रिक्रिएटेड इटरेशंस. तो आप सोच सकते हैं ये जो ऑफिशियल नया वर्जन है, इसको गाया साज भट्ट ने और सुबोध शर्मा ने, और जो म्यूजिक है इसको रिक्रिएट किया है मिथुन ने. 6 मिनट का ये गाना, बाप रे, लेकिन आजकल के गानों से कहीं कहीं कहीं लंबा. वेल, आई कैन टेल यू कि जो ओरिजिनल सिंगर है मुस्तफा जाहिद, उन्होंने भी इंडिपेंडेंटली रिलीज किया अपना सेपरेट वर्जन, वो भी अगस्त के ही महीने में, इसके कॉम्पिटिशन में, डेडिकेटेड टू आर्ट एंड म्यूजिक ट्रांसेंडिंग बॉर्डर्स. और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अगर आप एक नया गाना रिलीज करेंगे नई आवाजों में, मैं भी अपना ओरिजिनल गाना रिलीज करूंगा अपनी ही आवाज में. क्या बात है, क्या जिद है, क्या क्रेज है. बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट व्हेन इट कम्स टू आवारापन 2 के साउंड ट्रैक और बड़े सारे गाने ऑन मस्ती टॉप चार्ट्स. तेरा मेरा रिश्ता है पुराना, है ना रुचिका? है तो सही, आ गई तुम सोड़िए.
1: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी, और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी. Zaxxon India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition, celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mall. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
2: Trending song number 10.
3: पूरे देश को पगला दूंगा. अभी तो कुछ पेश किया है. सुनो.
4: Money follows, my brother.

0: याद।
1: मनी फॉलोज माई ब्रदर टुडू टुडू, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ गाना इज दिस? इट्स क्वाइट फन साउंडिंग राइट। रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती टॉप चार्ट्स
0: पूरे देश को।
2: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी,
3: क्यों सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
4: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी's रॉयल मिठाई एंड नमकीन। अर्ली बर्ड प्राइसेस फ्रॉम $72 प्लस ऑनवर्ड्स अंटिल 11th October। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shahimaharani.com।
1: In case you guys are wondering, ये money follows my brother है क्या? Well, it's a viral catchphrase and meme जो कि originate हुआ है actor and politician रवि किशन की तरफ से during an appearance on one of the podcasts. Podcast में रवि किशन जो है इनसे पूछा गया कि whether he valued पहचान मतलब recognition और पैसा, और उन्होंने क्या बोला? Recognition. उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, you should focus on building value and self improvement because money follows my brother. और money follows my brother पर बन गया गाना। मतलब सोचिए how people just catch on to some phrase and then decide. इनका confident delivery, facial expression और ये सब करके तो आपको पता ही है कि trend हो गया totally Instagram reels पे, YouTube shorts पे, X पे and of course meme पे meme, meme पे meme. That's exactly what Ravi Kishan is all about. Radio Masi 24/7 पर गाना नंबर 9 जो आएगा वो थोड़ा कुछ अलग ही आएगा। मतलब पता नहीं, मैं कह रही हूं ना, आई कैन नॉट गेट ओवर दिस प्लेलिस्ट। टॉक्सिक के साउंडट्रैक से। लेकिन फिलहाल उससे पहले एक बढ़िया सा गाना हो जाए आपके और हमारे झूमने का टाइम है, थोड़ा सा फ्लैशबैक हो जाए, थोड़ा सा बॉलीवुड के एवरग्रीन गानों में से एक किशोर दा का गाना हो जाए। ब्यूटिफुल वन इज दिस वन।
5: Bollywood Flashback, a

0: में क्या गाना है, क्या गाना है रेडियो मसी 24/7 पर, मजा ही आ गया। और आपको पता है कि गाने जहां पर हम एंजॉय कर रहे हैं वहीं पर साथ साथ में मुझे जो आपके मैसेजेस आ रहे हैं उसमें खूब मजा आ रहा है मेरे को पढ़ने में। अगर आपको कोई खास गाना सुनना है तो आई ट्राई टू फिट इट इन बिटवीन, जी हाँ, इन बिटवीन ऑल द मसी टॉप चार्ट्स। सो फिर भाई डिपेंड करता है आप मुझे कैसे ट्रीट करते हो आज के दिन में, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आपको मुझसे कितना प्यार है और मुझे आपके लिए कौन सा गाना चलाना है ना।
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
0: इस घंटे में रह गए गाने दो, गाना नंबर 9 और गाना नंबर 8, और वो दोनों ही मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग गाने हैं। 9 नंबर पे जो गाना है वो मुझे कोई खास पसंद नहीं है, लेकिन जो 8 नंबर पे है वो मुझे काफ़ी पसंद है। आपकी पसंद क्या है ये भी आप मुझे साथ में बता दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, बट जस्ट बिफोर वी गेट इन टू दैट गाइज, एक और खबर इस घंटे बॉलीवुड की, जी हाँ, विच इज कि अगर आपके ऊपर 60 करोड़ का फ्रॉड का केस लगा और आप बोले कि भाई मुझे काम से जरा ओवरसीज जाना है तो जाने दीजिए, तो कोर्ट्स आपको क्या कहेंगे। ऑफकोर्स कोर्ट्स आपको कहेंगे कि बेटा ऐसा है, 60 करोड़ का फ्रॉड का केस लगा हुआ है, भागने के चांसेस बहुत हाई हैं, आपको हम नहीं जाने देंगे। बात कर रही हूँ मैं इस टाइम शिल्पा शेट्टी और उनके जो पति हैं बिजनेसमैन राज कुंद्रा की। जी हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट में जब इन्होंने जाकर अर्जी दी कि हमें तो ज़रा बाहर जाना है, जी हाँ, ट्रैवल अब्रॉड करना है, बहुत टाइम हो गया जी कि हम भारत में ही ट्रैवल किए जा रहे हैं, हमें ज़रा कोलंबो जाना है और बिजनेस ट्रिप है, तो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अनखड़, उन्होंने कहा ऐसा है सर कि आप सबमिट कीजिए एक एफिडेविट डिटेलिंग द पर्पज़ ऑफ योर ट्रिप इंक्लूडिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन, साथ ही साथ में एविडेंस सपोर्टिंग द क्लेम कि वाकई बिजनेस पर्पज़ है, और फिर उसके बाद में हम आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप 60 करोड़ डिपॉजिट कीजिए और फिर आप जहां मर्जी है वहां जाइए। अब ये सुनने के बाद में कौन जाएगा ना। तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो है ऑफ द मुंबई पुलिस वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस समय ये वाला केस, विच अलेजेस दैट शिल्पा शेट्टी एंड कुंद्रा दे डाइवर्टेड इन्वेस्टमेंट फंड्स फॉर पर्सनल यूज। भाई इस समय इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें ये पता लग रहा है कि जो कोर्ट है उसने कोई इमीडिएट ऑर्डर्स तो नहीं जारी करे हैं, द लुकआउट सर्क्यूलर इशू नहीं किया है उनकी तरफ, लेकिन द मैटर इज स्केड्यूल्ड फॉर फर्दर हियरिंग और वो होने वाला है अगले ही हफ्ते, और अगले ही हफ्ते होने वाला मेरा हैप्पी बर्थडे, सो डोंट यू फॉरगेट, ऑलराइट, मेक श्योर दैट यू गाइज विश मी। अब मैं डेट नहीं बताऊंगी, आप मुझे रोज विश कर देना। अगला हफ्ता है तो 5 ही तो दिन है उसमें, है ना, वीकेंड्स नॉट इंक्लूडेड।
2: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 9।

0: join the countdown. ये है मस्ती टॉप 20. Now pumping up your Thursday evenings 5 PM onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters.
1: हाँ, जोश में रहने के लिए सिर्फ एक ही जगह नहीं, दो दो जगह पर मैं इस समय मौजूद हूँ. जी हाँ, आई एम राइट हियर विद यू लाइव ऑन मस्ती टॉप चार्ट्स, और साथ ही साथ में आई एम राइट देयर ऑन मस्ती AVI विद द लेटेस्ट ऑफरिंग ऑफ आवर मस्ती मीडिया नेटवर्क. इट इज कॉल्ड बिहाइंड द सक्सेस विद रेणुका. वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीबडी. जहाँ जाओगे हमें पाओगे.
2: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर spicy and they are happening. Join us on Masti Top.
1: You can be watching us live right now हमारे YouTube पेज पर और साथ ही साथ में हमारे Facebook पेज पर. जी हाँ, और of course through the Masti Media 24/7 app under Masti AVI भी आप हमें देख सकते हैं इस समय, और हमें Masti Radio के अंदर सुन भी सकते हैं.
3: तुम क्या हो, कैसे कहूँ.
1: What a beautiful track, Batwara 1947.
3: शामों की रोशनी हो, तुम हो किरण किरण.
1: It's called Tabassum. ये गाना है नंबर 7 पर आज इसी टाइम पर. लेकिन ताजा ताजा खबर तो मैं कुछ और लेकर आई हूँ. बात कर रहे थे हम 4,000 करोड़ की बनी हुई फिल्म रामायण की, तो भाई भारत में जो रहते हैं उनके लिए तो एक बहुत ही बढ़िया खबर है इस टाइम पर. पार्ट 1 रामायण की जो है अमंग्स द मोस्ट एंटिसिपेटेड रिलीजेस ऑफ 2026, वेल आज के दिन में डायरेक्ट करी है नितेश तिवारी ने. एंड द एम्बिशियस माइथोलॉजिकल एपिक इज प्लान्ड एज अ 2-part सिनेमैटिक सागा विद रणबीर कपूर प्लेइंग लॉर्ड रामा, साई पल्लवी एज सीता एंड यश एज रावण. साथ ही साथ में आपको ये मैं बताना चाहूंगी कि रिलीज हो रही है भारत में एक दिन पहले. जी हाँ, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. भाई बहुत बड़ी बात है.

0: हाय हाय ऐसे ऐसे कर करके जो भी गाने एंड होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ पुराने जमाने के हो सकते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 पर सुन रहे हैं आप मस्ती टॉप चार्ट्स, और मस्ती टॉप चार्ट्स पे जो अगला गाना है ना दैट इज वेरी रेलेवेंट स्पेशली टुडे। जी बिल्कुल, गाना नंबर 6 इस टाइम पर, ये वाला गाना जहाँ पर जब से इस साल में जून के महीने में ट्रेलर आया था ना वेलकम टू द जंगल का, तो तब से कुछ ऐसा हो रहा था कि हॉट टॉपिक सा बन गया था ये वाला फिल्म का ट्रेलर ही नहीं बट बाकी भी बहुत कुछ इंक्लूडिंग द लॉन्च, जहां पर बहुत से लोग एक्साइटेड थे टू सी द फ्रेंचाइज रिटर्न विद अ मैसिव कास्ट। द ट्रेलर हैज ऑफ कोर्स इट स्पार्क्ड मिक्स्ड रिएक्शंस ऑनलाइन, और जो नाना पाटेकर हैं उन्होंने उस टाइम पर मॉक किया था, जी हां मजाक उड़ाया था मेकर्स ऑफ द फिल्म को फॉर एक्सक्लूडिंग हिम एंड अनिल कपूर फ्रॉम द लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट। उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि भाई ये कौन सा तरीका हुआ कि आपने हमें इतनी बड़ी फ्रेंचाइज से अलग कर दिया। इनफैक्ट द वायरल मैसेज That went out all the way was 25 actors को तो ले लोगे लेकिन उदय शेट्टी और मंजू भाई जैसे औरा कहाँ से लाओगे। जी हाँ बिल्कुल, उसी के साथ में आज के दिन भी ऐसा लगता है कि एक औरा जो कि खत्म हो चुका है आज के दिन में उसी को याद करते हुए ये वाला गाना नंबर 6 हम चलाएंगे यहाँ पर रेडियो मसी 24/7 पर। और उसके बाद एक बहुत ही खास रिक्वेस्ट वाला गाना जो कि आएगा, जी हाँ, आपको और हमें खुश करने के लिए। इस समय हुआ है 7:17 और चल रहे हैं हमारे मस्ती टॉप चार्ट्स पर कुछ कुछ ऐसे खास गाने। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल के मस्ती टॉप चार्ट्स मुझे ना धुरंधर के बाद से पसंद आने कुछ बंद ही हो गए हैं।
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 6।

0: आप भी हमको पुकारोगे तो हम जरूर आएंगे, और अगर आप कोई हमें हिंट मारोगे कि हमारा वाला गाना चलाओ तो हम जरूर चलाएंगे। ऑन रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है खो गए हम कहां के साउंड ट्रैक। इट्स ब्यूटीफुल, वेरी वेरी वेरी सूदिंग ट्रैक, इट्स कॉल्ड बाहों में तेरी। ऑन रेडियो मस्ती 24/7 हमारा शो का नाम जो इस टाइम है वो है मस्ती टॉप चार्ट्स, और मेरा नाम जो है वो है रेणुका। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट
0: आउट। और अगला गाना वो जिसके पीछे मुझे डांट भी पड़ती है और प्यार भी बहुत मिलता है, लेकिन उस गाने को चलाने से पहले क्यों ना मैं एक ऐसी खबर बता दूं विच ऑल्सो रेजेज अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट एक इंसान की जिंदगी में। कुछ लोग उसको पसंद करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, कुछ एलिगेशंस होते हैं, कुछ एक्यूजेशंस होते हैं, प्रूफ कोई नहीं कर सकता, फिर भी एक इम्प्रेशन होता है, और जाने के बाद में कुछ लोग उसको सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों के लिए याद करते हैं और कुछ कहते हैं ईविल डेड। Well, I'm talking about none other than Nana Patekar. जी हाँ, तनुश्री दत्ता जिन्होंने accuse किया था नाना पाटेकर को of sexual harassment 2018 में, आपको याद ही होगा Me Too movement, right? Well, उनसे आज के दिन में पूछा गया कि आपको पता है नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं रहे, आपका क्या reaction है? So well, she shared a video on her Instagram story from an airport saying she was still processing the news. Well, of course, उन्होंने साथ में कहा condolences to the family, लेकिन उसके अलावा कहा क्या कह सकते हैं evil dead, मैंने सुना है, I've heard the news, आज मेरा बहुत काम है। And the other thing she said was कि मैं आज के दिन सोच रही थी कि मैं बहुत कुछ पोस्ट करूंगी, कुछ लाइव है, कुछ मेरा बहुत बड़ा इवेंट है, कुछ ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं, प्रॉब्लम सारी ये हो जाएगी कि आज के दिन में जो मीडिया है वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ नाना पाटेकर के फ्यूनरल को ही कवर करेगा, तो मेरा जो इवेंट है वो पीछे रह जाएगा। What do you think, guys? When somebody passes away, must you still remember all that you hated about the person? Ya aap kehte hain, chala gaya yaar, ab to bhul jao. Hai na ye gana wahi, jiske piche mujhe daan bhi padti hai aur pyar bhi sabse zyada milta hai. Up next on number 4, coming up. Not number 4, number 5, coming up, Gehra Hua, from the soundtrack of Dhurandhar.
1: Trending song, number 5.

भाई कुछ भी कह लो, धुरंधर का एक गाना आता है ना, उससे सारे सारे गाने ऐसे लगता है पीछे छूट गए। ऑन रेडियो मस्ती 24/7, आई विश आई कुड प्लेस दिस गाना येट अगेन ऑन नंबर वन, लेकिन क्या करें ना, दुनिया मानती नहीं है और अकेली मेरी चलती नहीं है। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस गाइस, इट्स मस्ती टॉप चार्ट्स विद रेणुका एंड दिस इज गाना नंबर 5।

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी,
1: क्यों सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानीज रॉयल मिठाई एंड नमकीन। अर्ली बर्ड प्राइसेस फ्रॉम $72 प्लस ऑनवर्ड्स अंटिल 11th अक्टूबर। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shahimaharani.com। इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxalam India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standya, cultural entertainment and family fun. 16th-25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxalam India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalamindia.com.
3: सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आपके कोई क्लाइंट्स आपके काम पे खुश हो जाएं। तो जैसे कि आप जानते हैं, फिलहाल के लिए अभी अभी चल रहा था हमारा एक बहुत ही खास प्रोग्राम विच इज़ लाइक यू नो व्हाट, 10th ईयर का आप कह लीजिए कि एक नई चीज़, बिकॉज एवरी ईयर वन एवर वी हैव आर एनिवर्सरी, वन एवर वी सेलिब्रेट मस्ती की यू नो एक सालगिरह, तो हम एक नई चीज़ कुछ लॉन्च करने की कोशिश करते हैं उस टाइम पर, चाहे उस प्रोग्रामिंग में चेंजेस हो, चाहे कोई नया एलिमेंट हो, चाहे कोई रिकॉर्ड हो। आप जानते हैं, यू बीन विद अस through the past many years, so you know exactly what I mean, right? On Radio Mossy 24/7.
4: They are fresh, they are hot, they are spicy, and they are happening. Join us on Masti Top 20.
3: जी बिल्कुल, तो बात मैं कर रही हूँ आज के दिन में, जो अभी अभी हमारा पॉडकास्ट जो कि एक नया हमारा एक लॉन्च हुआ है आज ही के दिन में, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और खुशी कुछ इस तरह की हो रही है कि लग रहा है हमने एक नए एरिया में कदम रखा है, और इस पॉडकास्ट के साथ में वी हैव डेफिनेटली एंटर्ड अ न्यू फील्ड, अ न्यू फंक्शन, अ न्यू पिलर, एंड वी होप दैट दीज प्रोडक्शंस विल गो अ लॉन्ग वे इन ऑल्सो एंटरटेनिंग यू। एंटरटेनमेंट के साथ में इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, इंस्पिरेशन होना ज़रूरी है, बहुत कुछ होना ज़रूरी है, राइट? रेडियो मसी 24/7 पर मैं रेणुका आपके साथ एंड ब्रिंगिंग टू यू द मसी टॉप चार्ट्स, जिसके अंदर हमारा अगला गाना कुछ ऐसा है। जी बिल्कुल, कॉकटेल 2, इसी के गाने बिल्कुल धुरंधर के बाद में बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, बट नॉट एज मच एज आई वुड हैव एक्सपेक्टेड देम टू बी। राइट राइट राइट और एब्सोल्युटली राइट। अगर वो वाले दिन वापस आ जाएं जहां पर धुरंधर के गाने ही पूरे के पूरे 20 के 20 चल रहे थे तो मजा आ जाने।
0: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 4।

और जहाँ एक तरफ चल रहे हैं हमारे मस्ती टॉप चार्ट्स, वहीं पर द सूदिंग यस्टरडेज अमेजिंग अमेजिंग सुपर हिट्स में से एक ये गाना अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में शाहरुख खान को याद करते हुए, जो कि मुझे हमेशा याद करना अच्छा लगता है, सुनते हैं ये वाला गाना। यस बॉस, यस बॉस, वेल एब्सोल्युटली यस बॉस।

0: यार ऐसे गाने जब बीच में आ जाते हैं ना तो आई टेल यू टोटली आंखें ना रिजुवनेट कर देते हैं जिसे कहते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है रेणुका के साथ में मस्ती टॉप चार्ट्स।
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
0: जी बिल्कुल रेणुका योर डार्लिंग, यहाँ पर आप ही के मैसेजेस यहाँ पर मैं जवाब दे रही हूँ। आप में से बड़े सारे लोग इस टाइम पर तुक्के लगाने शुरू हो चुके हो कि रेणुका आप बता दो लास्ट के 3 गाने कौन से हैं, क्योंकि अब 13 मिनट रह गए हैं, इनफैक्ट अब 12 मिनट रह गए तुम्हारे शो को खत्म होने में, तो क्यों नहीं अब बता देती हो तुम। वैसे मुझे भी लगा हाँ यार मैं बता ही देती हूँ, आप लोग तो मार काट पर उतर आते हो मतलब बिल्कुल भी। तो ठीक है मैं ना 2 गाने बताती हूँ, तीसरा बताने का मेरा मन नहीं है, ऐसा कह के क्या मैं निकल सकती हूँ यहाँ से, आपको क्या लगता है?
2: गुलाबी साड़ी अणी लाली
0: This is one of the Ghanas which could be number 1, number 2, number 3.
3: Miss Yara, Lai Masakara, Lucky Ani Pai Rathina.
0: This could be one of the Ghanas which could also be number 1 or number 2. And then of course there is one more Ghana which could also be number 1, number 2, number 3. फटाफट मुझे बता दो कि यहाँ पर कौन सा गाना होने वाला है नंबर 1 पे। देखते हैं क्या सीखा है आप लोगों ने हमसे इतने टाइम से, क्या सीखा है तुमने जल्दी बताओ।
1: You are tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
4: Trending song number 3.

0: कमाल 4 के साउंडट्रैक से। अभी आप सुन रहे थे गाना जी हाँ नंबर 3 पर। और जाते जाते बस एक खबर भी आपको दिए देती हूँ। वेल आज का शो हैज बीन अ लिटिल अप लिटिल डाउन राइट, बिकॉज नाना पाटेकर जी की बात करते करते करते करते ऐसा बीच बीच में लग रहा है कि यार देयर इज समबडी यू नो हुज हैविंग अ फ्यूनरल इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड यहाँ पर आप उनकी बात कर रहे हैं एंड यू आर काइंड ऑफ बिडिंग फेयरवेल। एंड साथ ही साथ में ऑफकोर्स गाने जो हैं आप बदल भी नहीं सकते हैं, बीच बीच में सिर्फ बात कर सकते हैं उनके बारे में। They are fresh, they are hot, they are spicy. So well, right now, जाने से पहले आपको पता है कि मैं जब दो गाने रह जाते हैं मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। जाने से पहले सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि नाना पाटेकर जी हाँ उनकी उनकी जो क्रिमेशन है, जो फ्यूनरल है, इस समय खत्म हो चुकी है और बिल्कुल स्टेट ऑनर्स के साथ में। लेकिन किसी ने ये कहा कि भाई नाना ने अपना फायरवुड, जो लकड़ी है ना अपने फ्यूनरल के लिए, अपने आप ही प्रिपेयर करी थी, बिकॉज एट वन पॉइंट ही हैड एक्चुअली टोल्ड अ फोटोग्राफर फ्रेंड दैट ही वॉज कीपिंग देम ड्राई सो अटेंडीज वुडंट क्राई एट हिज क्रिमेशन ड्यू टू इट। मतलब किस तरह की बातें करते हैं लोग, कभी कभी जानते हैं कि भाई जाने वाले हैं या जब जाएंगे तो किसी को भी रोता हुआ छोड़ के नहीं जाने वाले। ऑलराइट, ऑन दैट नोट गाइस, आई होप आप भी लोग खुश हैं हमारे गाने नंबर 1 की सिलेक्शन से। मैं निकल रही हूँ यहाँ पर एंड आई होप यू हैव अ फैंटास्टिक रेस्ट ऑफ द इवनिंग अहेड। टेक गुड केयर गाइस एंड मिस मी ओके, याद जरूर करना। बाय।
1: Trending song number 2.

सिरहाने को छोड़ाया, तोड़ाया ख्वाब किसी का, जाने क्या छोड़ाया।

0: कभी कभी कि जैसे तुझको बनाया गया मेरे लिए,
1: ये झूठ बोलते हैं मेरे ख्याल कि जैसे

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Welcome, namaste. Welcome to another beautiful episode of Dear Masti Dil Se. जी हाँ, शुरू हो चुका है वो वक्त जहाँ पर होती है सिर्फ और सिर्फ आपके और हमारे दिल की बातें। मैं आपकी अंशरा यहाँ पर आपके साथ on Radio Masti 24/7. You know, जैसे कि हर बार ही एक थॉट के साथ शुरू करते हैं कि लाइफ की कितनी प्रॉब्लम्स एक्चुअली प्रॉब्लम्स होती हैं और कितनी सिर्फ सिचुएशंस होती हैं जिनका जवाब हमें पता नहीं होता है। बिकॉज हमारा दिमाग ना हर चीज का आंसर उसको तुरंत चाहिए, एकदम इंस्टेंट नूडल्स के जैसे। फ्रेंड ने कुछ अजीब कहा, इसका मतलब क्या था? पार्टनर थोड़ा सा चुपचाप है, कुछ हुआ है क्या? किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज है, राइट चॉइस है क्या? एंड समटाइम्स हम इतना एनालाइज करते हैं कि ओरिजिनल सिचुएशन छोटी रह जाती है और हमारे दिमाग में उसी की OTT सीरीज बन जाती है मल्टीपल सीजन्स के साथ। बट आई हैव रियलाइज्ड समथिंग, हर सिचुएशन का इमीडिएट आंसर होना जरूरी नहीं है। समटाइम्स यू नीड अ कॉन्वर्सेशन, समटाइम्स यू नीड अनदर पर्सन का पर्सपेक्टिव, समटाइम्स यू नीड अ लिटिल टाइम, और कभी कभी यू जस्ट नीड समवन टू से कि हाय यार, आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर फीलिंग दिस वे। And that's what this space is all about. आज भी आपके letters होंगे, कुछ relationships की बातें होंगी, कुछ everyday situations जो बाहर से बहुत simple लगती हैं, पर जब खुद के साथ होती है तो उतनी simple नहीं लगती। हम किसी को right या wrong declare बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करते, कोई judgment नहीं होती, we just look at it from different sides and maybe find a way forward, but together. So wherever you are listening from, just settle in. आपके letters, आपके feelings और हमारे दिल से conversations. Welcome to Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7.

डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: Welcome back to Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7. That's right, आपकी अंशा यहाँ पर बिल्कुल वापस आ चुकी है और सबसे पहली चिट्ठी को लेकर वो वापस आई है। And I have a feeling कि ये सिचुएशन काफी लोगों को शायद फेमिलियर लगे। शुरू करें। So चिट्ठी कहती है, Dear Masti, मेरी एक acquaintance जैसी है जिसके साथ professionally काम करना पड़ता रहता है। काम की वजह से friendship भी है, but we are not very very close. Since we need to work together, obviously I try to maintain a good equation and honestly I am always happy to help whenever needed. But there are times when this person really tests my patience. अगर काम में कुछ mess up हो जाए, instead of simply accepting it and fixing it, there is always a long justification for why it happened. और कभी-कभी serious situation में भी behavior इतना random होता है कि मुझे लगता है why no common sense has been used. Situation की seriousness को तो कभी-कभी समझना चाहिए ना? Problem ये है कि काम करवाना भी है, so I can't simply distance myself. That I can't deal with it. जब किसी के साथ professionally equation maintain करना जरूरी हो, dear Masti, but उनका attitude repeatedly आपका patient test करे, तो ऐसे person को handle कैसे करे without constantly getting irritated? Wow. All the people who are working, yeah, you know this feeling, right? Okay, because यहाँ difficulty ये नहीं है कि you don't like this person. In fact, you have clearly said that you are on good terms, you help them. There's even a certain friendship. The frustration comes because you cannot depend on them in the way the situation sometimes requires. And I think सबसे exhausting part mistake भी नहीं होता है. Mistake सबसे होती रहती है. What happens after the mistake? आप solution mode में रहते हो कि इसको fix कैसे करें और सामने वाला explanation mode में रहे कि actually ये हुआ था, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ. And if it is long, I can imagine. और अंदर से आप यही कह रहे होते हो कि मुझे documentary नहीं चाहिए, solution चाहिए, right? Then at those moments where situation आपके लिए clearly serious है, but सामने वाले का response somehow seriousness जो है वहाँ पे मैच नहीं कर रहा है. That's when the irritation starts. But यहाँ एक tricky बात है. You do need this professional equation. तो ना completely ignore कर सकते हैं, ना हर बार frustration निकाल सकते हैं, and obviously हर तीसरे दिन किसी adult को please use common sense ये भी नहीं बोल सकते हैं. तो what do you do? Lower your expectations? Yeah, do you become more direct? Do you stop helping beyond what's necessary? Is there a way to deal with the behavior without letting it disturb your own head every single time? You know what, I'm not done with this letter yet. Ek musical break lete hain and when I come back, let me tell you that maybe what I feel about it. Alright, so stay tuned. Ye hai Dear Masti Dil Se. And if you feel that this is somewhere related to you as well, yeah. आती हूँ वापस थोड़ा सा सोच के.
2: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में. वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में.

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं हूं आपकी अंशा यहां पर आपके साथ। ब्रेक से पहले जो लेटर था, लेट्स टेक अ क्विक रीकैप। एक ऐसे पर्सन के बारे में जिनके साथ प्रोफेशनली काम करना पड़ता है, इक्वेशन अच्छी रखनी जरूरी है। आप हेल्प भी हैप्पीली करते हैं, बट कभी कभी देयर वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स रियली टेस्ट्स योर पेशेंस। मिस्टेक हो जाए तो सोल्यूशन से पहले लंबी जस्टिफिकेशन, और सीरियस सिचुएशन में कभी ऐसा रैंडम रिस्पॉन्स की मन में एक ही थॉट आता है कि कभी तो सिचुएशन को समझ लो। सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैव टू डील विद समवन बट यू कैन नॉट कीप गेटिंग इरिटेटेड एवरी टाइम दे बिहेव इन अ वे यू डोंट अंडरस्टैंड। आई थिंक एक स्लाइटली डिफिकल्ट चीज शायद एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, स्टॉप एक्सपेक्टिंग दिस पर्सन टू रिस्पॉन्ड द वे यू वुड, बिकॉज आई फील इरिटेशन का एक बड़ा पार्ट वहां से भी आ रहा होता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मेरी मिस्टेक होती तो पहले पहले मैं फिक्स कर देती, बाद में एक्सप्लेन कर देती। एब्सोल्युटली, बट दैट्स यू। मे बी दिस पर्सन गेट्स डिफेंसिव व्हेन दे मेक अ मिस्टेक। Just think of it that way. Maybe justification is their way of protecting themselves. Maybe their sense of urgency genuinely isn't the same as yours. Understanding that doesn't mean that you will have to like it or excuse it. It simply means don't waste your energy being surprised by a pattern you have already seen before. A practical part pe aate hain. When something goes wrong and explanation starts, I would... I understand there was a reason. Aisa kuch se shuruaat karungi, and abhi pehle let's fix this because this needs to be sorted urgently. We can discuss what happened later. I know someone who had taken this approach, and I think it's a very sane way of dealing with it, because this is something which has to be dealt at that point of time without, you know, losing your own mental sanity. Bring the conversation back to the task and, being clearer with the communication ki itna deadline hai, yahan tak ho jayega, important things in writing and all those things. Basically, reduce the space for randomness and helping, of course, help kijiye if you genuinely want to, but don't keep compensating for somebody else's lack of planning, because kaam to karwana hi hai. Because slowly you will start resenting the person for something you have repeatedly stepped in to manage. Professional relationships over the time period, I've understood, don't always need emotional closeness. Sometimes they simply need clarity, consistency, and a little emotional distance. So, ek aur cheez jo main, I think I would kind of remind myself ki mujhe is insaan ko badalna nahi hai, mujhe bas ye decide karna hai ki main is insaan ke sath effectively kaise kaam kar sakti hu, because common sense bhi na, unfortunately common ka definition sabka same nahi hota hai. So protect the world, be clear about what you need and where possible, stop carrying their behavior home in your head. I really hope this helps. Yeh Dear Masti, dil se.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: लोग मुझे डरपोक कहते हैं, लोग मुझे बहुत वीक लड़की बोलते हैं, लोग मुझे कहते हैं कि नहीं यार तुम कभी लाइफ में कोई बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाओगी क्योंकि तुम एक डरपोक हो, और शायद मुझे इन बातों का फर्क भी नहीं पड़ता। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे अनुपम आपके साथ। एंड जब आपको लोगों की बातों का फर्क नहीं पड़ता है ना, तो शायद आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट स्टेज पर आ जाते हैं। डोंट यू थिंक सो? एनीवेज, अभी मेरे हाथों में जिनका लेटर है उन्होंने मुझे पता है क्या बताया है। डियर मस्ती दिल से, मैं वो लड़की हूँ जिसे लोग चेहरे पर डरपोक बोल के जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं लिफ्ट में अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं MRT में अकेले जाने से डर जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आज तक कभी डिनर पे अकेले नहीं गई। और लोग जब मुझे डरपोक बोलते हैं तो मुझे इन बातों का बुरा भी नहीं लगता, बट कभी ना कभी एक सम पॉइंट ऑफ टाइम लगता है कि क्या मैं सच में इतनी डरपोक हूँ? क्या लगता है तुम्हें? एनीवेज, जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि अगर आपने ये बात मुझ तक भेज दी है, मतलब इतने लाखों लोग हमें सुन रहे हैं और आपने अपना सवाल मुझ तक भेज दिया है, तो आप डरपोक तो बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, आपकी अपनी लाइफ में ना कुछ रूल्स होंगे, कुछ अपना बैक स्टोरी होगी, आप अपनी लाइफ में बहुत डेलिकेट वे से बड़े हुए होंगे। सो आपकी अपब्रिंगिंग, आपका एटमॉस्फेयर, आपका एम्बियंस, आपके आसपास के लोग, वो चीज़ें जो है ना, वो आपका एक नेचर बना देती है थोड़ा सा डर लगाने वाला। बट स्टिल अगर आपके मन में आ गया है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा बीट कर सकते हो, तो डू इट। और अगर आप नहीं भी करते हो तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। ओके, सो वैसे भी लड़कियां ना बहुत खूबसूरत, डेलिकेट और प्यारी सी और थोड़ी सी सहमी सी खूबसूरत लगती हैं, सिर्फ फिल्मों में नहीं, रियलिटी में भी। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे अनुपम, और ऐसा ही एक बहुत डेलिकेट सा गाना कर रहा है आपका इंतजार।

मस्ती दिल से। जी हाँ, चिट्ठियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए और सीधा बढ़ते हुए, चिट्ठी मेरी ये कहती है कि डियर मस्ती, मैंने रिसेंटली वेट लूज किया। दैट्स नाइस एंड एवरीवन सेज यू लुक सो मच यंगर। आई नो इट्स मेंट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बट अब मैं सोचने लगी हूँ तो मैं पहले कैसे लगती थी। क्या अच्छे इंटेंशन से दिया गया कॉम्प्लीमेंट भी अनकंफर्टेबल फील करा सकता है? Absolutely करा सकता है, and I think ये हम सभी के साथ हुआ है, right? कोई बोलता है, wow, you look so good now, और हम smile करके बोलते हैं, thank you so much, but कहीं ना कहीं अंदर एक छोटी सी आवाज की looking good now, पहले मुझ में थोड़ी ना कोई problem थी। See, देखिए सबसे पहले हर compliment के पीछे hidden agenda ढूंढना भी जरूरी नहीं है। Yeah, right. Most probably people genuinely noticed a change and they like what they see and they want to appreciate you. And that's it. उन्होंने वो second meaning जो आप सोच रहे हो शायद सोचा भी नहीं होगा, मतलब I think it's just in your mind. ऐसा in my opinion only. क्योंकि मैं भी ऐसा सोचती हूँ, मैं अपनी ही कहानियाँ अपने दिमाग के अंदर काफी बना चुकी हूँ। I am very much capable to do so, but that doesn't help most of the times. But yes, a compliment can still make you uncomfortable, especially weight and age, skin, body. ये काफी personal चीजें होती हैं और कभी-कभी compliment unknowingly ये message आपको देता है कि your current version is somehow better than your previous version, and maybe that's the part bothering you. But मैं यहाँ पर एक चीज और कहूंगी, प्लीज अपने पुराने वर्जन को इस कॉम्प्लीमेंट के अगेंस्ट खड़ा मत कीजिए। यू डोंट हैव टू थिंक दैट इफ आई लुक गुड नाउ आई मस्ट हैव लुक्ड बैड देन। नो, यू लुक लाइक यू देन, यू लुक लाइक यू नाउ एज वेल। एंड अगर समवन सेज दैट यू लुक यंगर, यू कैन सिंपली टेक द इंटेंशन यू वॉन्ट फ्रॉम इट। दे आर सेइंग आई लुक गुड, सो थैंक यू, बस move on. और अगर body related comments genuinely bother करते हैं आपको, especially from someone close, you can absolutely say that thank you. But honestly, मुझे weight या age पर comments थोड़े से awkward लगते हैं. Communication again, just tell them. कोई drama, कोई offense नहीं, just information. Because compliments are interesting. देने वाले की intention, नियत जो है, काफी important होती है. But receive करने वाले का comfort भी equally important होता है. So yes, compliment अच्छे intention से आ सकता है. और फिर भी आपको अच्छा ना लगे, दोनों चीजें एक साथ true भी हो सकती हैं. I hope this helps. ये है Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7. But ये जो आने वाला गाना है, I hope this makes you feel good.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। अब है आपकी अंतरा की यहाँ पर बारी और अगली चिट्ठी की भी। ये चिट्ठी कहती है, डियर मस्ती, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही अर्न करते हैं बट मनी को काफी डिफरेंटली देखते हैं। मुझे ट्रैवल, ईटिंग, एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड करना पसंद है, उन्हें सेव करना बिकॉज सेविंग गिव्स हिम सिक्योरिटी वो पसंद है। दोनों फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल है फिर भी एक्सपेंसिव प्लान्स आर्ग्यूमेंट्स बन जाते हैं। जब मनी को लेकर प्रायोरिटीज डिफरेंट हो तो रिस्पॉन्सिबल कौन डिसाइड करता है? गुड क्वेश्चन माई डियर लिसनर। आई थिंक यहाँ पहला काम ये करना है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है ये डिसाइड करना ही बंद अगर कर दे तो हाउ अबाउट दैट। बिकॉज फ्रॉम वॉट यू हैव रिटन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है बट आप दोनों के लिए मनी का मीनिंग डिफरेंट है। फॉर यू मनी सेज लाइफ मिली है, एंजॉय करो, एक्सपीरियंसेस बनाओ, मेमोरीज बनाओ। फॉर हिम मनी सेज कल कुछ हो गया तो आई वॉन्ट अस टू बी सिक्योर। एंड एक्चुअली दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब स्पेंडिंग पर्सन सेवर को कि यार तुम तो लाइफ एंजॉय ही नहीं करते हैं बोलने लगे और सेवर स्पेंडिंग पर्सन को कहे कि तुम्हें फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं। ऐसा चीज जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, राइट? फिर डिस्कशन पैसे का कम और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ज्यादा बन जाता है। आई वुड एक्चुअली मे बी सिट टुगेदर when you are not planning a holiday or buying something expensive because us waqt emotions already kafi involved rehte hain. Decide maybe few things together, kitna save karna hai, kitna regular expenses ke liye hai aur kitna guilt free enjoyment ke liye hai. That third wala jo bucket hai is very very important. Budgeting karna basically, jaise for me I always make excel sheets because agar savings target comfortably meet ho raha hai, bills sorted hai, responsibilities taken care of hai, then jo amount you have manually kept for enjoying life usse spend karne par har bar court hearing type situation create hi nahi hogi. And similarly agar koi expensive experience us agreed budget ke bahar hai then maybe saver gets to have the say ki maybe not right now, let's plan for it. Money conversations mein goal ye nahi hona chahiye ki ek jeete aur dusra maan jaye. Goal should be one person's security and the other person's joy. दोनों के लिए बजट में जगह बना लेनी चाहिए. Because you don't want to save so much for tomorrow that you forget to live today, right? And you don't want to enjoy today in a way that makes tomorrow a frightening kind of a situation. Responsible perhaps वो है जो दोनों को थोड़ी थोड़ी सी जगह दे. I hope this helps. Dear Masti Dil Se, पर मैं आपकी अर्चना यहाँ पर आपके साथ. Stay tuned.

0: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10
2: का 20. अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा. मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है. टाइम टू रेज द बार.
3: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल.
2: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: मुझे कई बार डर लगता है उन सवालों से जो आर या पार सिचुएशन के हमसे पूछ लिए जाते हैं। डियर मस्ती दिल से शो, मेरे यानी आरजे नुपड़ के साथ हैं आप। सो अभी जिन्होंने मुझे लेटर भेजा है, उन्होंने पता है क्या लिखा है? हाय डियर मस्ती दिल से, आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जो डिसीजंस है वो दिल से लेने चाहिए या दिमाग से, आप बताएं। भाई ऐसे सवाल छोटे होते हैं पर बहुत डिफिकल्ट साउंड करते हैं, स्पेशली टू मी। अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से पूछना चाहोगे तो देखो, जब बात रिश्तों की आ जाती है ना, जब बात अपनों की आ जाती है जिन्हें आप दिमाग से नहीं दिल से बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो वहाँ पे आपको दिल से डिसीजन लेने चाहिए। लेकिन जब आप कोई प्रोफेशनल स्पेस में हैं, कोई आप उन लोगों के साथ हैं जिनके संग आपका रिश्ता बहुत सालों साल का नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा नपा तोला सवाल जवाब करना चाहिए और नपे तोले डिसीजन लेने चाहिए। दिमाग से इवेंचुअली वर्क करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, और मुझे लगता है यही डायरेक्शन आपके लिए भी सही होगा।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 एंड यहाँ पर आपकी अंतरा की बारी वापस से आ चुकी है। चलिए अपने अगले लेटर की तरफ बढ़ते हैं। ये कहते हैं डियर मस्ती, जब हम फैमिली विजिट करते हैं रिलेटिव्स इंसिस्ट करते हैं कि हम उनके घर रहें। आई लव देम बट ऑनेस्टली होटल में रहना मुझे इजियर लगता है, अपना रूटीन प्राइवेसी एंड नोबडी हैज टू होस्ट अस। बट होटल बुक करो तो इमीडिएटली यही आता है कि हम इतने पराए हो गए हैं, अब यहाँ आए हो तो हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। क्या कम्फर्ट चूज करना क्लोजनेस रिजेक्ट करना है? या आई थिंक इट्स मोर विद इन अस, यू नो, कि स्पेशली कि सिर्फ होटल वर्सेस घर का डिसीजन, ये अक्सर हमारे यहाँ पे ये बहुत ही कॉमन एक डिस्कशन होता है ना। आई कम्प्लीटली गेट यू, आपने होटल बोला नहीं कि सामने वालों को सुनाई देता है कि आपके घर में हमें रहना पसंद नहीं है। व्हाइल यू मे बी सिंपली सेइंग कि मुझे अपनी स्पेस में रहना इजियर लगता है, आई थिंक दोनों साइड यहाँ पे जेन्युइनली समझने लायक है। फॉर मेनी फैमिलीज हमारे घर रुको इज नॉट एकोमोडेशन, इट्स देयर वे ऑफ शोइंग अफेक्शन। सुबह की चाय साथ में, लेट नाइट कॉन्वर्सेशन की क्या खाओगे, एक रूम तैयार करना आपके लिए स्पेशली, एंड दैट्स हाउ सम पीपल एक्सप्रेस क्लोजनेस। सो व्हेन यू चूज अ होटल उन्हें रिजेक्शन फील हो सकता है इवन व्हेन रिजेक्शन इंटेंडेड नहीं है। पर दूसरी तरफ एज वी गेट ओल्डर ट्रैवल का अपना रिदम होता है, राइट? किड्स हो सकते हैं, स्लीप टाइमिंग्स, बाथरूम रूटीन्स, वर्क कॉल्स, या सिंपली यू डोंट वांट टू शट अ डोर एट नाइट एंड बी इन योर ओन स्पेस विदाउट फीलिंग समबडी हैज टू कीप होस्टिंग यू, दैट इज ओके टू। मैं बस एक चीज डिफरेंटली करूंगी, व्हाट आई हैव पर्सनली ऑल्सो इन माई लाइफ आई हैव डन दिस, डोंट ओवर एक्सप्लेन अपनी चॉइस कि जैसे आप परमिशन के लिए पूछ रहे हो, यू कैन नॉर्मली से कि अरे पराए कहाँ पे है, इसीलिए तो आए हैं आपसे मिलने ही, तो बस होटल में रहना हमारे रूटीन के लिए इजियर है सुबह से शाम तक, मतलब आई विल कम एंड मीट यू व्हेनेवर पॉसिबल, प्लीज डोंट वरी, एंड actually do that, spend some time together, maybe eat with them, because closeness ultimately same roof ke niche sone se prove nahi hoti hai. Kabhi elderly parents hai, bahut rarely milte hain, ya staying together itself is meaningful to them, maybe once in a while it's okay, but every visit par apni comfort sacrifice karna hi closeness ka certificate ho, I don't think so, and I don't agree with it as well. In my very very personal opinion, sometimes staying separately can actually make the time together better. So no, comfort choose karna necessarily closeness reject karna nahi hota hai, bas make sure that in choosing your space you don't stop giving the time which I think you should. I hope this makes sense to you and it helps you as well. सुनते रहिए डियर मस्ती दिल से, अभी 7 बजे के उस पार यहाँ पर मैं सिर्फ अकेली नहीं होंगी, हमारे साथ हमारे संघर्ष साथी श्रीधर जो है वो भी ज्वाइन करने वाले हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल फाइंड आउट व्हाट केस डज ही हैव टुडे फॉर अस।

0: यार बहुत ही मुश्किल सवाल लेकर आए हैं यहाँ पर से भाई हमें तो मतलब एटलीस्ट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ देर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर ऑलरेडी एड टू कार्ट करके उसमें रखा हुआ है बस आई वॉन्ट टू बाय दोज थिंग्स बट वेल वेलकम एवरी वन एंड एज यू कैन सी संघर्ष साथी श्रीधर इज ऑलरेडी हियर श्रीधर आई कैन ऑलरेडी सेंस समथिंग इज कमिंग आवर वे सो लेट्स टॉक अबाउट द केस
1: दिस इज वेरी डिफरेंट यू नो जैसे हम लज़ाड़ा पे जाते हैं कहीं पे जाते हैं पता नहीं somehow the urge to keep buying things is always there and luckily they have something called a cart तो मेरा भी पड़ा है 200 आइटम है कार्ट पे luckily I haven't purchased तो ऐसा ही एक कॉल आया था एक क्लाइंट पे इट वाज अ वीडियो कॉल वेरी इंटरेस्टिंग वन तो वीडियो कॉल वी वेंट ऑन अ वीडियो एंड उसने अपना मुंह नहीं दिखाया उसने कैमरा पीछे से दिखाया एंड ही शोड मी अ टेबल आई फाउंड नथिंग अनयूजुअल मतलब सब था टेबल पे ऐसे क्या व्हाट्स अ प्रॉब्लम इसे भाई तुमने देखा नहीं ठीक से देखो बोला यार क्या देखना है पेन है इसे नहीं पेन्स नहीं है 400 पेन है ठीक से देखो नहीं सो द टेबल वाज हाफ ऑफ पेन्स मतलब वो पूरा टेबल में आधा से ज्यादा बस पेन थे पाउचेस में थे तो ही हैड 400 ऑड पेन्स एंड ही सेड क्या हुआ ही सेड भाई जब भी मैं बाहर जाता हूँ एक पेन खरीद लेता हूँ यार आई वाज लाइक वाओ पेन कलेक्टर हो क्या इसे नहीं सब बकवास पेन है इसे कलेक्शन के लिए कुछ नहीं है बट आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट
0: Wow! Wow! This is so unique. I okay. वैसे श्रीधर मुझे ऐसा लगता है कि I want to know what did you suggest personally also because मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे when we go out there so many times we want to kind of and we stop ourselves over there but there are people maybe who are not able to stop and every time they end up and that is why I think this guy also approached you. All right, let's come back and get to know कि अगर क्या क्या किया होगा पता नहीं आई एम वेरी क्यूरियस मुझसे तो ये दो गानों का भी वेट नहीं हो रहा है बट देन लेट्स गो फॉर इट एंड वी विल बी राइट बैक

0: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusat Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focus syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste, behnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: जूते, परफ्यूम्स, बैग्स, ओ गॉड भाई, आज श्रीधर ने ना एक ऐसा केस खोल दिया है यहाँ पर। वेल वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। व्हाई वी आर स्माइलिंग सो मच, बिकॉज इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे इट्स सो रिलेटेबल दिस केस इज दैट अभी जो श्रीधर बात कर रहे थे, तो ये जो बंदा है इसको लगता है कि जब भी वो बाहर जाता है वो पेन खरीदता ही खरीदता है, उसको एक आदत सी पड़ गई है, एंड ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ दिस ऑब्सेशन विद पेन। एंड इट्स नॉट दैट अ कलेक्टर्स पेन, इट्स लाइक एनी रैंडम पेन, शायद वो काम भी नहीं करता होगा, बट इट्स हिज थिंग दैट बाहर गए हैं तो पेन लेकर ही वापस आना है। सो श्रीधर क्या क्या किया?
2: This is again, पहले सुना तो I could find it relatable because मेरे पास at one time I had 200 over pens, सब बकवास पेन थे, maybe one or two were writing properly but the remaining 80% of them were crap, I just don't know, कहीं भी, so I was like that, कभी कभी sometimes these cases that come are very relatable, so this one I had the perfect solution for him, मैंने पहले ही पूछ लिया, भाई तू पेन किस मूड पे खरीदता है? तो यू सेड नहीं, आई नेवर पेड अटेंशन टू दैट, बट जब भी जाता हूँ देन आई जस्ट स्टैंड एट द स्टेशनरी शॉप देयर, एंड इंडिया में तो यू नो देयर आर सो मेनी राइट, तो आई जस्ट स्टैंड देयर, मैं देखता रहता हूँ। बोला नहीं नहीं नहीं, आई टोल्ड हिम स्पेसिफिकली ट्रेस बैक एंड ये बोलो कि व्हाट वर यू फीलिंग एट दैट टाइम। उसने बोला यार थोड़ा रेस्टलेस था, या सम काइंड ऑफ अ फीलिंग that incomplete, you know, that kind of feeling that he used to have, and I said kabhi bore lagta tha ya you're feeling restless, because that was exactly the feeling I used to have. This was a very clear cut case. So I told him, do you buy when you are feeling bored, when you did not know what to do, when you are finding very restless kind of situation at home ki office mein ki kahin pe? And he said yeah, I think that was the reason. Root cause there was restlessness, which is very similar to what used to happen to me. Kyunki bachpan mein, in my case, my mom would always tell that my handwriting is very bad, and I used to keep changing the grip of my hand to write legibly and things like that. So kabhi kabhi certain pens would feel good, and I felt the pen changing makes you write better. So isliye this habit got drilled into me. So uske hisab mein he did not share what went through, but he said yes, he would always buy a pen whenever he felt restless.
1: Okay.
2: So that was important for me to know.
1: So what eventually you suggested him to do?
2: No, first thing I told him is it's a phase, nothing wrong with him purchasing. So we had to work on what to do when he's restless. So bola agli baar stationery dukan mat jao, kahin coffee shop jao aur coffee pilo. So at least you don't keep collecting this. And I told, just go 400 pens you have. I say har ek pen ko nikalo, dekho kya kaam kar raha hai. Seedha jao sab pen le lo aur kisi orphanage pe dal do. Isme ek ajeeb sa sukoon milta hai tumhe ki you are helping somebody use pens and write and whatnot. And keep maybe 4 or 5 with you. And usne pucha, hey, will this habit go away? I say nahin. Phir se shuru hoga, but it will not be 400 this time. It will come to maybe 100 pens. Mm-hmm. Then gradually it will just go.
1: I know. So, ये बात थोड़ी सी एकदम ही बहुत ही रिलेटेबल लेवल पे आई थिंक मेरे और संघर्ष साथी श्रीधर के उसमें भी चली गई, बट इफ यू आर ऑल्सो इन टू दिस काइंड ऑफ अ थिंग, आई होप दिस हेल्प्स हूएवर इज लिसनिंग। कभी भी आपको ऐसा लगे दैट यू वांट टू गेट इन टच विद अस, यू फील वेरी मच रिलेटेबल एंड क्लोज टू अस, दो वी आर स्ट्रेंजर्स ओवर हियर, प्लीज फील फ्री टू राइट 9151893, दैट्स आवर नंबर। थैंक यू श्रीधर, आपका और हमारा संघर्ष साथी और डियर मस्ती दिल से का हमारा ये एसोसिएशन यूं ही बना रहे।
2: Yeah, I'm really happy that this is reaching out to people and बहुत सारे लोग are getting benefited by this. Good, great work.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक डियर मस्ती दिल से, आप सुन रहे हो ऑन रेडियो मस्ती 24/7। वेल दैट वॉज हमारा संघर्ष साथी श्रीधर अब से कुछ ही देर पहले। चलिए फिलहाल यहाँ पर मेरे अगली चिट्ठी की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं। ये कहती है, डियर मस्ती, मैं हूँ बाय द वे आपकी अंशरा यहाँ पर आपके साथ। डियर मस्ती, मेरी एक फ्रेंड ऑलमोस्ट हर चीज का प्राइस पूछ लेती है। बैग कितने का है, इसमें कितना स्पेंड किया, हमारे बच्चों की ट्यूशन क्लासेस में कितना कितना लगा, इवन की गिफ्ट्स का भी प्राइस वो पूछ लेती है। आई डोंट थिंक शी इज जजिंग मी, शी इज नेचुरली क्यूरियस एंड अपने एक्सपेंसेस के बारे में ओपनली वो बात भी करती है, बट मुझे मनी रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े पर्सनल लगते हैं। मनी देंगे आई वुड रादर नॉट से, बोलना मुझे एक्चुअल प्राइस बताने से ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। जब कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है बट आपके लिए टू पर्सनल है तो बिना रूड लगे आंसर कैसे अवॉइड करें? आई गेट दिस इन अ वे, ऑल्सो इट डिपेंड्स दैट ये जिस इंसान के बारे में आप बोल रही हैं या रहे हैं वो आपके कितना क्लोज है ना, वो उस पर भी डिपेंड करता है, बिकॉज क्वेश्चन से ज्यादा ऑकवर्ड आंसर ना देना लगता है। एंड आई थिंक सिंपल, आई थिंक हमको ये चीज याद रखनी चाहिए, समवन बीइंग कंफर्टेबल asking doesn't mean you have to be comfortable answering as well. It's a very practical thing I'm talking about. Aapke dost ke liye money perhaps personal topic hai hi nahi. Wo apne expenses openly share karti hai. Toh naturally, unhe lagta hai ki everybody should be equally comfortable. It's quite natural kabhi kabhi to think like that. So I wouldn't assume that she's nosy ya phir she's judging you, but aapko agar answer nahi karna hai to mat kijiye. Aur har bar sorry I don't discuss finances bol ke serious announcement karna bhi zaruri nahi hai. Sometimes you can just simply keep it light ki yaar wo mat pooch bas pasand aa gaya to maine le liya. You see, just saying, holiday ka poocha, budget thoda hill gaya hai, but it was totally worth the experience. Expensive to hai, but yeah, I enjoyed it. Just idhar udhar se, jaise baate karke, jo hai, aap is situation se bahar nikal sakte hain. So you are answering the conversation without answering in numbers. If she still says, or he still says, ki haan, but kitna, then maybe... यार एग्जैक्ट नंबर शेयर करने में थोड़ी सी वियर्ड हूँ, प्लीज डोंट माइंड, आई एम श्योर यू विल नॉट। आई थिंक दैट सॉर्ट्स दैट आउट। कोई बहुत ज्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं है, एंड बिकॉज जितना हम अपनी प्रेफरेंस जस्टिफाई करते हैं ना, उतना हमें खुद लगने लगता है कि जैसे हम कुछ गलत, खुद ही कुछ गलत कर रहे हैं, जब कि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइवेसी का मतलब सिर्फ सीक्रेट्स तो नहीं होता, राइट? वी ऑल हैव डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ व्हाट फील पर्सनल। किसी के लिए सैलरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, किसी के लिए एज, किसी के लिए रिलेशनशिप्स, और किसी के लिए प्राइस ऑफ अ बैग। सो डोंट जज हर फॉर आस्किंग, एंड डोंट जज योरसेल्फ फॉर नॉट आंसरिंग। आप अपनी अपनी जगह पे परफेक्टली ओके हैं। I think this should help out, but this is what I think about the situation. Radio Masti 24/7 par main Anshra aapke saath.
2: Drop the needle!

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: Yes, with that, आज के डियर मस्ती दिल से का रैप अप करने का टाइम आ चुका है। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ यहाँ पर वापस आ गई है। एंड यू नो, आज के लेटर्स डिफरेंट थे एज यूजुअल, एज एवरी सिंगल एपिसोड। सिचुएशंस अलग अलग थी, बट समवेयर द कॉमन थ्रेड इन दैट वाज दैट हर चीज को ना पर्सनल लेना जरूरी नहीं है, बट हर चीज को टॉलरेट करना भी जरूरी नहीं है। कभी कोई पर्सन प्रोफेशनली आपका पेशेंस टेस्ट करता है, कोई कभी आप रियलाइज करते हैं आई डोंट नीड टू चेंज दिस पर्सन, आई जस्ट नीड टू चेंज हाउ आई डील विद देम। कभी फैमिली का प्यार कहता है हमारे घर रुको, और आपका कंफर्ट कहता है आई लव यू बट मुझे होटल का रूम दे दो प्लीज। एंड दैट्स लाइफ राइट। हम कॉन्स्टेंटली फिगर आउट कर रहे हैं कि कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ क्लियरली बोलना है, कहाँ किसी की इंटेंशन समझनी है, और कहाँ अपनी नीड को भी इम्पोर्टेंस देनी है। और शायद मैच्योरिटी का मतलब हर सिचुएशन को परफेक्टली हैंडल करना नहीं है। समटाइम्स मैच्योरिटी इज सिंपली बीइंग एबल टू से आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बट दिस इज व्हाट वर्क्स फॉर मी, without anger, without guilt, without making the other person wrong. Because relationships में हर difference को conflict बनाना जरूरी नहीं है। दो लोग अलग हो सकते हैं और फिर भी एक दूसरे को respect कर सकते हैं। So well, अगर कोई situation आपका patience test करे इस हफ्ते आने वाले दिनों में, पहले ये decide कीजिए क्या मुझे इसे solve करना है, communicate करना है, या सिर्फ simply थोड़ा सा different तरीके से handle करना है। हर चीज को दिल पे नहीं लेते, लेकिन जो दिल में है उसे समझना बहुत जरूरी है। मैं अंतरा ऑन बिहाफ ऑफ नुपुर एंड हमारे संघर्ष साथी श्रीधर आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ, एंड वापस से मिलेंगे अगले एपिसोड में अपने डियर मस्ती दिल से के कुछ और आपके लेटर्स, आपकी फीलिंग्स और हमारे कॉन्वर्सेशंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ ईच अदर, एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो मस्ती 24/7।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे।

एक बात समझ में नहीं आती, अच्छे लोग क्यों मरते हैं, अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, रोने वाला क्यों हंसता है, हंसने वाला क्यों रोता है। सह लिया, बहुत सह लिया, खामोशियों में बहुत रह लिया, अब दिल का शोर सुन, इरादे कुछ और सुन।

देश बदल गया, सब कुछ बदल गया। एक थप्पड़ मारोगे तो 100 थप्पड़ मारेंगे, आंख उठा के देखोगे तोड़ देंगे फोड़ देंगे।

0: एक जज्बा है, जुनून है, एक रुतबा है, फोर्स बगावत है, एक पागलपन है, शहादत है, एक दीवानगी है, फोर्स एक आवाज है, तेरी आवाज, मेरी आवाज, हम सबकी आवाज, 120 करोड़ एक साथ मिलकर चिल्लाए तो पूरी दुनिया को सुनना ही पड़ेगा, तो चिल्लाओ।
1: जादू है, नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
3: यार।

बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।

जहाँ चार यार, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार। जहाँ चार यार, जहाँ

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: आग कभी कभी रोशनी, कहीं कहीं शोर रौनकें, कहीं आग आग कहीं धुआं धुआं, कभी आस पास कभी यहां वहां, कभी शोर हो तुम कभी मौन हो तुम, कौन हो तुम?

तुम्हें नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर भोला चेहरा हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

जिसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग गई, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

तेरी सादगी अनमोल है, किरदार बेमिसाल है, तू जो भी है लाजवाब है, तू ख्याल है या एक सवाल है, तेरे सामने जो भी आएगा उसे तुझसे प्यार हो ही जाएगा।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: दिन शुरू हुआ ने कि यहाँ पर भीगे होंठ तेरे, उफ गंदी बातें, भजन वाला घंटा अभी अभी खत्म हुआ है और इनको देखो जरा, भीगे होंठ तेरे। आज का ये पहला गाना मैंने नहीं चलाया, मैंने नहीं लगाया।
1: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
2: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: लगे अब्रसा मुझे तन तेरा। कवि की कल्पना पे फोकस करें, कवि की कल्पना पे फोकस करें मैडम।
0: हाँ, पर कवि तो तन पे फोकस कर रहा है ना, कल्पना पे आप फोकस करो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, एंड दिस इज मस्ती मैडनेस। और हो भी क्या सकता है, फ्राइडे सुबह है और अंतरा है, रेणुका है, तो ऑब्वियस है ना भाई कि यहाँ पर तो एक ही चीज चल रही होगी। हाँ भाई, कैसा रहा तुम्हारा हफ्ता पूरा का पूरा? हमारी तो ज्यादा बातें ही नहीं हुई, क्या चल रहा है मतलब?
1: Oh my gods, यही तो वो फीलिंग है जो फील करानी थी कि देखो कैसा लगता है मुझसे बिना बात करे, कैसे जी पाओगी लड़की? आओगी ना फ्राइडे को, फिर बात करेंगे।
0: नहीं, नहीं, अच्छी वाली जी पाऊंगी, जी एच आई जे सब पाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइए चलो ढंटड़े शुरू करते हैं हमारा यहाँ पर आज का शो। दिस कॉल्ड मस्ती मैडनेस। मस्ती मैडनेस पे सारी टेढ़ी बड़ी बातें, जी हाँ, सुबह सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएंगी और चलेंगी 10 बजे तक। सो तैयार है, तैयार है, आप बताइए ना।
1: बिल्कुल यलगार हो।
0: गुड मॉर्निंग,
4: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे।

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी,
1: क्यों सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। Shahi Maharani's Royal Mithai and Namkeen. Early bird prices from $72 plus onwards until 11th October. For more details, call 6235-8840 or log on to shahimaharani.com.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम रेडियो मस्ती 24/7 पर. भाई मैं पूरे हफ्ते अंतरा से क्या नहीं मिली कि मेरी तो तबीयत ही खराब हो गई.
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी

0: ऐसा ही होता है, इसीलिए कहते हैं जानवर इतने दिन दूर मत रहा करो, है ना?
1: हाँ जी, सुबह से ना जिस तरह के गाने चल रहे हैं, जिस तरह की बातें अब्र और बदन और पता नहीं क्या क्या सुबह सुबह से लगी हुई है, मुझे तो इस स्टूडियो में इसके साथ बैठने में घबराहट हो रही है। अंतरा, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, कहाँ से इतनी भरी भरी आई हो तुम आज, क्या बात है
0: बताओ? सुबह सुबह फ्राइडे, वो भी नॉट बैड।
1: कुछ सोचो, मतलब हद हो गई है। एक एक तुम हो जो हमेशा सिर्फ यही बातें सोचती हो, और एक ये लड़का है, ये बेटा है, देखो इस बेटे को, जो कि घर से दूर काम करता है, तो उसने अपनी मम्मी के साथ में एक लैपटॉप सेटअप कर दिया, वीडियो कॉल जो 24/7, मतलब वो दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। वो काम कर रहा होता है, उसकी मम्मी भारतवर्ष में होती हैं, वो अमरीका में होता है, तो भी मम्मी रात के 3 बजे उठती हैं अगर पानी पीने या कुछ, तो वो सिर्फ कंप्यूटर पर देखती हैं और बेटा वहां काम कर रहा होता है। मतलब क्या बात है, सोचो ऐसे बच्चे भी होते हैं। हाँ, सीखो।
0: ये मेरे जैसे तो बच्चा नहीं है, डेफिनेटली, वेरी क्लियरली। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये सिंगल है?
1: सिंगल ही है, तभी है। और मुझे तो लगता है इसने ना क्लॉड को यूज किया है, ठीक है, टू राइट स्क्रिप्ट्स, कि अगर वो कनेक्शन हट जाए तो ऑटोमेटिकली दोबारा से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। डाइनिंग टेबल पे उसने लैपटॉप अपना रख दिया है, पुराना एक कंप्यूटर लेके, और मम्मी कभी भी उसको देख सकती है। भाई तेरा कुछ ना हो पाएगा।
0: I have no words, actually, मतलब क्या ही बोलूं अब मैं इसमें, हम एटलीस्ट मैं तो कुछ ना ही बोलूं तो बेहतर है।
1: इसका कुछ हो भी नहीं सकेगा, ये मम्मी को ही देखता रह जाएगा जिंदगी में, मैं बताती हूँ। मतलब इट्स टफ लिविंग अलोन इन अनदर कंट्री, कह रहा तो भाई तू किसी और को माँ बना, तू यहाँ पर अपनी माँ के पीछे क्यों पड़ा हुआ।

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.
1: रेणुका को जापान भेजते हैं, उनको ये वाले कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कराते हैं, फिर ये बहुत सारा माल जीत के लाएंगे हमारे मस्ती मीडिया नेटवर्क के लिए।
2: कितना मतलब लंबी कहानी, आज जापान बहुत सुबह सुबह नहीं जा रहे हम। सीरियसली इतनी सुबह तो हम कभी जापान नहीं गए मस्ती मैडनेस पर ना।
3: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं,
2: क्योंकि वहाँ पर रोती हुई औरतों को मिलते हैं।
1: इसीलिए
2: हाँ, तो क्या खबर लाई हो चमिया, बोलो।
1: हाँ जी हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि वहाँ पे ना कॉन्टेस्ट चल रहा है रेणुका।
2: अच्छा,
1: वहाँ पे ना सोने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, और अगर आप टॉप पे आए ना तो $14,000 मिलेंगे। $14,000
2: सोने के लिए? किसके साथ सोना है, बात तो ये है।
1: हाँ, प्रॉब्लम वही है, अकेले सोना है मैट्रेस के ऊपर।
2: तो 40 भी कम है,
1: आस पास होंगे, मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे दूसरे दूसरे मैट्रेस पे, बट वो दूसरे दूसरे मैट्रेस पे होंगे, वो थोड़ा सा सैड पार्ट है, बट देन मैनेज कर लेना ना, मतलब सोना ही तो है जाके। मैट रेस करके नाम इन्होंने दिया हुआ है। 75 पीपल जो है उनका वो मॉनिटरिंग सर्विस वगैरह, वो तार वार लगाकर 90 मिनट्स में बेसिकली यू हैव टू अचीव द डीपेस्ट फास्टेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल स्लीप। और जो टॉप प्राइस जीतेगा वो जीतेगा $14,000। मैं कह रही हूँ ये बहुत अच्छा मनी फंड है। आई एम बिकमिंग द शार्क टैंक राइट नाउ, सेंडिंग यू टू जापान। जीत के लाओ,
2: जापान जाओ, वो भी सोने के लिए। मतलब किस तरह के ये विचार है तुम्हारे। तो तुम क्यों नहीं जा रही हो, तुम्हें जाना चाहिए ना। तुम अपनी अपॉर्चुनिटी मेरे नाम क्यों कर रहे हो, मुझे शक हो रहा है इस बात पे। बताओ बताओ इसी टाइम।
1: क्योंकि अलग अलग मैट्रेस पे सोना है ना।
2: मुझे पता था। चलो भाई, मेरा इसके साथ ब्रेकअप हो रहा है इस टाइम पर रेडियो मस्ती 24/7 पर। ये गाना मैं बड़े दिनों बाद सुन रही हूँ यार, ब्रेकअप सॉन्ग। इमेजिन हाउ पॉपुलर इट वाज, राइट? याद है तेरे को?
1: बहुत ही ज्यादा
2: क्रेजी।

0: रेडियो मस्ती 24/7 पर अंतरा आज इतना ऊंचा बोल रही है ना, और हमको ऐसा लग रहा है कि मेरे में आज हिम्मत ही नहीं है, पता नहीं। उफ, इट हैज बीन अ वेरी टफ एंड अ लॉन्ग वीक, कोई तो काम करेगा।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी शो।
2: यही तो वो बात है जो जाता है बिहाइंड द सक्सेस, माय फ्रेंड, बिहाइंड द सक्सेस।
0: अरे यार, बैंड बजा दिया लोगों की तो सक्सेस के पीछे जाते जाते, मेरा अपना जो बैंड बजाना पूछ मत, बाय गॉड की कसम यार, बड़ी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है।
2: आई थिंक जो फिनाले एपिसोड है वो आपका खुद का ही होना चाहिए, द जर्नी।
0: देखो बहन, ऐसा है कि आज तक सिर्फ एक इंसान, करण जौहर, मुझे ऐसा लगता है जो कि स्टाइल में और बातों में और यू नो द वे ही टॉक्स, उसमें छा जाता है। मेरा मन है कि कभी ना कभी वो मेरा इंटरव्यू करे, अगर वो करेगा तो ठीक है, नहीं तो रहने दे यार, मेरे से बेटर कोई है ही नहीं।
2: अरे भाई भाई भाई, बोलने का ना भाई भाई, अभी का अभी क्रेजो को फोन लगाता है ना, रुको ना, क्या कर रहे हो?
0: रियली नो, बट ऑनेस्टली सबने देखा कि नहीं देखा हमारा बिहाइंड द सक्सेस वाला जो एपिसोड है, जो पॉडकास्ट है, देखा कि नहीं देखा? भाई देखो, ऐसी ऐसी कहानियां जिंदगी में बड़ी इंस्पायर करती हैं यार, बड़ी इंस्पायर करती है। कल डॉक्टर शरद वाला जो शो है ना, आई टेल यू अंतरा, हाउ कैन अ पर्सन डिसाइड टू टेक 1.2 million का जो लोन है उसके साथ में एक कंपनी को टेक ओवर करना, मतलब बताओ, कोई बंदा कहता है भैया जीरो से भी चलेगा, लेकिन 2 million के डेट के साथ कौन कंपनी टेक ओवर करता है, बताओ। भाई ने टर्न अराउंड कर दिया।
2: बट दैट इज हाउ यू मेक दैट, तभी तो सक्सेस की कहानी ऐसी ही बनती है।
0: टोटली,
2: बिकॉज देयर आर सो मेनी रोड ब्लॉक्स बिहाइंड व्हिच नोबडी सीज। वो आज की डेट में हम लोग सब देखते हैं कि भाई बहुत ही सक्सेसफुल है, बट भाई देखो भी तो उस बंदे ने क्या फाइट मारी है।
0: एग्जैक्टली, और कोई आसान नहीं रहा, मतलब शुरुआत में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और ऑब्वियसली रातों की नींद गुम गई, बहुत कुछ हो गया, लेकिन ये एपिसोड देखना जरूर, बिकॉज एवरी एपिसोड बहुत ही कमाल की कहानियां हैं, और ये लोग हमारे आसपास रहते हैं, दैट्स द बिगेस्ट थिंग, यू नो, इट्स नॉट समथिंग जो कहीं दूर पर्दे पे।
2: एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ द शो एज वेल, दैट दीस आर द पीपल हु आर अराउंड अस एंड नाउ, एंड दे शुड हैव, इनके बारे में, इनकी कहानियों के बारे में बात करनी चाहिए थी, एंड वही हम कर रहे हैं।
0: और मुझे ऐसा लगता है कि ये ह्यूमन लाइब्रेरीज है, यू नो, ये आके जब अपनी कहानियां बताते हैं ना, दे आर जस्ट अमेजिंग। चलो मैं सेंटी हो रही हूँ अपने पॉडकास्ट के बारे में, पर जरूर देखना जरूर गाइस, इट इज ऑन आवर ऐप मस्ती मीडिया 24/7 पर, पॉडकास्ट सेक्शन में जाके जरूर देखना, और भी बहुत सारी जगहों पर ढूंढो

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: और भाई इस टाइम तो मैं एक ऐसी बात बताने वाली हूँ कि सिस्टम भी परेशान हो जाए. आप सोचिए कि ट्विंस होते हैं, राइट अंतरा? ट्विंस रामपुर उत्तर प्रदेश की, दो दो, खिजरा और तुबा. अच्छा। जुबेर, ठीक है. अब बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं. भाई हमारी बायोमेट्रिक की मशीनों ने ये सोचा ही नहीं कि जो 100% आइडेंटिकल वाले ट्विंस होते हैं उनकी तो आंखों के रेटिनाज और फिंगरप्रिंट्स भी सेम निकले, तो फिर मशीन कैसे लेगी? उसको तो यूनिक चाहिए ना ये सारा कुछ. ओए होए,
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो. दिस इज मस्ती.
4: ओह माय गॉड, पॉइंट टू बी नोटेड, माय लॉर्ड.
2: तो अब
4: क्या हुआ,
2: क्या होना है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यार इस टाइम पर. अब आधार की प्रोफाइलें जो बन रही थी इनकी अपडेट हो रही थी, ठीक है, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की रजिस्ट्रेशन के लिए. अब सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिया एक सिस्टर की एप्लीकेशन, बिकॉज वो कहते हैं ये तो ऑलरेडी है हमारे पास, ये तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है क्योंकि फिंगरप्रिंट्स, आयरिस पैटर्न सब कुछ सेम है. तो अब क्या करें, अब मतलब इसमें तो कोई चीटिंग भी नहीं हो रही है. तो अब फैमिली ने सबसे पहले नोट किया कि भाई ये जो फोन होते हैं ना, फोन एक बहन दूसरी बहन का फोन खोल सकती है जो कि आयरिस या फेशियल रिकॉग्निशन से है. तो तब माँ बाप ने कहा कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. अब उनकी हर जगह प्रॉब्लम हो रही है. अब तू सोच, तू एयरपोर्ट पे जा रही है, अभी अभी तू निकली है आगे मशीन से, फिर तू दोबारा निकल रही है तो वो तेरे को रोक लेगा. अच्छा एग्जाम के लिए जा रहे हो, वो कहता है तू तो दोबारा कैसे आ गई, तू अभी तो तू अंदर गई थी. हर जगह उनको परेशानी.
4: फेमस कहानियां है ना कि ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस में ये बहुत होता है कि एक एक बच्चा, एक ट्विन जो है ना हमेशा ही मार खाता रहता है, दूसरे का भी वही मार खाता रहता है.
2: तो अब यहाँ लड़ाइयाँ ये हो रही है कि पहले मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं रुकना, और वो दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं पहले मुझे जाना है क्योंकि इसमें बड़ी परेशानी होती है. अब क्या करें, अब मशीन को अगर ये बोले कि भाई तू डुप्लीकेट अलाउ कर दे तो मशीन बोलेगी फिर तो सारी दुनिया डुप्लीकेट का फायदा उठाएगी. तो अब करें क्या, मतलब बहुत ही परेशानी, डोंट यू थिंक?
4: बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज ही आ गए हम तो, वैसे ही सुन के कंफ्यूज ही आ गए.
2: टोटल.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: दूसरे घंटे में एंट्री मारते हुए मासूम मर्दों की बात करेंगे। मुझे बड़े ही मतलब मासूम मर्दों पे तो बहुत ही मतलब लगता है कि हाय हाय हाय कितनी मासूम है, टपक रही है देखो कैसे।
1: ऑफ कोर्स
2: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग।
1: हाँ, सुबह से जापान के हग करते हुए आदमियों को सुन सुन के यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जापान जाना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन मस्ती मीडिया 24/7। हाँ यही तो नाम है हमारे ऐप का।
0: भाई यहाँ पे जो है मोरू मिया नाम के ये जो हमारे भाई साहब हैं तो ये काफी चर्चा में है बांग्लादेश में फिलहाल, क्योंकि पिछले 10 साल में इन्होंने 21 बंदियों के साथ शादी कर रखी है। 21? हाँ जी। तो क्या है कि मोरू मिया ने कहा, मतलब मीडिया को बताया कि ये जो वुमेन आती हैं वो अप्रोच करती हैं, ये मोस्टली उनसे उम्र में बड़ी होती हैं। एंड देन ही फेल्ट मासूमियत, देखो आप इसने फील